सुप्रभात, हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि साथ तदनुसार 28 मई सन 2026 सुबह के 5:49 होने वाले हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, लीजिए सुनिए चिंतन।
1: वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। इसी तरह से जो संत होते हैं, उन लोगों ने अपना शरीर इसीलिए धारण किया हुआ है ताकि वो दूसरों के काम आ सकें। दधीची की कहानी तो हम सब जानते हैं, उन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करें फल की इच्छा न करें। सुख किसी वस्तु को पाने में नहीं है बल्कि त्याग में है। सुख के पीछे पागल होकर दौड़ने में नहीं बल्कि कर्मशील होकर दुख और मुसीबतों से जूझने में है। यदि हम दुख को जीत लें और उसे खुद पर हावी नहीं होने दें तो हम सुखी हैं। आसक्ति से दूर रहकर दूसरों के लिए जीना ही जीना है। जो अपनों को भूलकर दूसरों के लिए जीता है उसे सच्चा आनंद मिलता है। माता पिता अपने बाल बच्चों के लिए जीवन भर अपनी सारी शक्ति समेटकर उनके कल्याण में लगा देते हैं। इसी भावना को अधिक व्यापक बनाने की कोशिश करने से मनुष्य परिवार के दायरे से निकलकर समाजोपयोगी जीवन बिताने में समर्थ होता है। मोह, आर्थिक दृष्टिकोण, स्वार्थ, अर्थ प्रधान नीति मनुष्य को जहां एक ओर स्वार्थी बनाती है और उसकी वृत्ति को संकुचित करती है, वहीं दूसरी ओर दुख की अनुभूति को तीव्र कर देती है। मनुष्य परिस्थितियों का दास बनकर रह जाता है और जीवन के वास्तविक सौंदर्य से वंचित रह जाता है। दूसरों से कुछ पाने में नहीं बल्कि देने में सुख है। किसी भूखे को खाना खिला दें आप, इससे जो सुख मिलेगा वो खुद खाने से नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति के आशीर्वाद से हमें जो आत्मीय बल मिलता है वो इतना अधिक होता है कि हम अपने स्वाभिमान और अपने भीतर की भावना को बढ़ाते हुए कोई भी काम करने में समर्थ रहते हैं। सुख को पाने के लिए स्वार्थ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष आदि से ऊपर उठकर हमें काम करना पड़ता है दूसरों के लिए। और इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं उनका दर्जा समाज में सबसे ऊपर रहता है। कहा भी

जाता है। सुख केवल त्याग में है। त्यागी लोग अपने लिए कुछ भी नहीं करते, वो दूसरों के लिए, समाज के लिए त्याग करते हैं। त्याग वही कर सकता है जिसका निश्चय दृढ़ हो, जो दूसरे के कष्टों के निवारण के बारे में सोचता है। यदि ऐसी भावना सबके मन में आ जाए तो समाज में लोग अपने आप सुखी हो जाएंगे। मोटर, गाड़ी, रुपया, पैसा, बंगला, ये वो सुख नहीं दे सकता जो किसी के लिए त्याग करके मिलेगा। ये सब देखकर आनंद की अनुभूति होगी, उसी में सच्चा सुख मिलेगा। परहित में ही सच्चा त्याग है, इसी में सच्चा सुख है। त्याग से ही दूसरों के हित का चिंतन संभव है। कहा जा सकता है त्याग में ही सुख है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि दूसरों के हित से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है, नीच काम नहीं है। किसी न किसी रूप में त्याग के साथ सुख जरूर जुड़ा हुआ है। त्याग चाहे छोटा हो या बड़ा, महत्व उसके भाव का है। इससे हमें असीम सुख और शांति

0: पीड़ा सम नहीं अधमाई, यानी कि दूसरों के हित से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है, नीच काम नहीं है। किसी न किसी रूप में त्याग के साथ सुख जरूर जुड़ा हुआ है। त्याग चाहे छोटा हो या बड़ा, महत्व उसके भाव का है। इससे हमें असीम सुख और शांति प्राप्त होती है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना होनी चाहिए। राम जब पुल बना रहे थे, एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में छोटे छोटे कंकड़ जमा कर रही थी। उसने भी त्याग किया था, अपने श्रम का बलिदान किया था। इसे देखकर भगवान राम बहुत आर्द्र हुए थे, द्रवित हुए थे। उन्हें खुशी हुई थी कि एक अधना प्राणी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार परहित के बारे में सोचता है। हम तो मनुष्य हैं, आइए हम दूसरों के हित के लिए अपना जीवन बलिदान करने, त्याग करने की दिशा में सोचें, विचार करें।
1: त्याग से प्राप्त होने वाला असीम सुख शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं ये त्याग, ये प्रेम, ये करुणा ही पशु और इंसान के भेद को अस्पष्ट करता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। अब समय हो चला है किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी बातों का। जी हाँ, कृषि चर्चा।
2: आजुक कृषि चर्चा आप सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेही किसान भाई बहन लोकन, हमरा लोकन गाय के व्यावसायिक रूप से पोस कर अपन आर्थिक स्थिति नीक कर सके छी। गाय के जो नीक जका पोस कर उचित सेवा करब तो लाभ ही लाभ है। व्यावसायिक रूपे जो गाय के पोसे छी तो कम से कम 3 गाय राख सके छी, जकरा मिनी डेयरी कह सके छी। ओ बेसी गायक संख्या अहाँ अपना अनुसारे बढ़ा सकै छी। स्नेही किसान भाई बहिन लोकन, डेयरी खोलबाक वास्ते सबसे पहिने एहि लेल उचित स्थान के व्यवस्था करबाक चाही। ओकर बाद पूंजी के आवश्यकता करय पड़ैत अछि, एहि वास्ते दक्षता होयबाक चाही, संगे नीक श्रमिक लगाओल जाइत अछि। एहि सबके पूरा करबाक लेल केंद्र सरकार द्वारा डेयरी उद्यमिता विकास योजना चलाओल जा रहल अछि। एहि योजना अंतर्गत मुख्य रूप से 3 काज के आगू बढ़ेबाक लेल योजना बनाओल गेल अछि, जे अछि डेयरी फार्मक स्थापना, बेरोजगारी के दूर करब, डेयरी के उत्पाद के बढ़ाएब, जाहि सँ किसान भाई बहिन लोकनि के आय मे वृद्धि भ सकनि। डेयरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत संकर नस्लक गाय के कीनब अछि। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के लाभ उठेबाक लेल सरकार द्वारा किछु पात्रता निर्धारित कयल गेल अछि, जकरा पूरा कयला पर चयनित किसान लोकनि के ओकर लाभ भेटत। आवेदक के पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक में खाता इत्यादि दस्तावेज होयबाक चाही। एहि योजना अंतर्गत लाभ उठेबाक वास्ते ऑनलाइन पंजीयन कराबऽ पड़ैत अछि, जाहि लेल विभागक वेबसाइट पर जाकऽ आवेदन कऽ सकैत छी, ओकर बाद ओकर लाभ उठा सकैत छी। ई बड़ नीक योजना अछि, तै एकर लाभ सब किसान भाई बहिन के उठेबाक चाही। ओ जागरूक रहबाक चाहियनि, तखने लाभ लऽ सकता। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, डेयरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत सीमांत गरीब ओ मध्यम वर्गीय किसान लोकनिक लेल, शिक्षित बेरोजगार युवक लोकनि के लेल रोजगारक दृष्टि सँ ई योजना चलाओल गेल अछि, जाहि अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट इकाई, पशु चिकित्सा इकाई, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र इकाई हेतु ऋण देबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। एहि योजना अंतर्गत संकर नस्लक गाय लेल 70,000 प्रति गाय देल जाइत अछि। एहि योजना सँ लाभ उठेबाक लेल किछु दिशा निर्देश देल गेल अछि, ओ किछु पात्रता निर्धारित कयल गेल अछि, जेना एहि योजना सँ लाभ लेबाक लेल आवेदन देबऽ पड़ैत अछि कयल जाइत अछि। ओ हुनका लोकनिके एहि योजनाके अंतर्गत जे पात्रता पूरा करैत छथि

0: हुनका ओकर लाभ भेटैत अछि। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंग्रेजीमे DEDS सेहो कहल जाइत अछि, जे पशुपालन डेयरी ओ मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा डेयरी के क्षेत्र में उद्यमिता के बढ़ेबाक वास्ते शुरू कयल गेल अछि, जाहि अंतर्गत डेयरी फार्म हेतु गायक खरीद ओ एकर बुनियादी ढांचा के विकास लेल वित्तीय सहायता प्रदान कयल जाइत अछि, जाहि कारणे ग्रामीण स्तर पर आय बढ़ैत अछि, ओ रोजगार के अवसर बढ़बैत अछि। ई ध्यान रहे जे सरकार द्वारा एहि योजना में अनुदान सेहो देल जाइत अछि, जेना सामान्य किसान लोकनि के 25% देल जाइत अछि आ उद्यमिता विकास योजना लेल बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना के पूंजीगत सब्सिडी सेहो देल जाइत अछि। ई योजना पशुपालन डेयरी ओ मत्स्य पालन मंत्रालय के अंतर्गत अबैत अछि। एहि योजना अंतर्गत ऋण लेबाक लेल बैंक के माध्यम सँ पूंजी देल जाइत अछि, जकरा सधाबऽ पड़ैत अछि। विशेष जानकारी लेबाक लेल विभाग सँ संपर्क कऽ कऽ लाभ उठा सकै छी। एहि संग आब आजुक चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि चर्चा, जानकारी दे रही थी सविता कुमारी। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय सुबह के 6 होने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
3: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाढ़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर

0: चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को लेकर। डॉक्टर उत्सवराज शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जन्म से लेकर 28 दिन के बारे में कहा जाता है कि जो अवस्था होती है वो नवजात अवस्था होती है, उसमें बच्चों के लिए वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसको अपनाया जाना बहुत ही जरूरी है?
3: देखिए, ये नया जो गाइडलाइन है NNF का, उसमें यहाँ तक करते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड नाल जो होता है उसको काटने से पहले माँ की छाती पे लगा के माँ का स्तनपान शुरू करवाते हैं। यानी इससे आप समझ गए होंगे कि स्तनपान का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। माँ अगर सिजेरियन यानी ऑपरेशन से भी बच्चा होता है, उस कंडीशन में भी बच्चे को उल्टा करके माँ की छाती पे लगाएं, बच्चा जो दूध खींचेगा, अगर वो एक या दो बूंद भी दूध आ रहा होगा वो अमृत है उसके लिए, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो गाढ़ा पीला दूध होता है। कुछ चीज़ें जो बच्चे के बारे में कहते हैं हम लोग कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम घर वालों को क्या समझाते हैं। पहली चीज़ कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं 6 महीने तक, ऊपर का शहद, घुट्टी, पानी कुछ भी नहीं। कहते हैं कि कोई भी नाक में या कान में किसी तरह का कोई तेल नहीं डालना है बच्चे के।
2: अच्छा।
3: साबुन तेल पाउडर का इस्तेमाल 1 महीने तक नहीं करना है, ना कि बच्चे के चमड़े बहुत नाजुक होते हैं, किसी भी चीज से रिएक्शन हो सकती है, तो साबुन तेल पाउडर का इस्तेमाल 1 महीने तक ना करें। 1 महीने के बाद जब आप लगाते हैं बच्चे को, तो सिर्फ नारियल का तेल इस्तेमाल करें, जो कि IAP भी कहता है, किसी और तेल का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप बच्चे के ऊपर पाउडर स्प्रिंकल करते हैं तो वो उड़ के नाक में, आंख में जाता है, जो कि एक सर्दी का छींक का कारण बन सकता है, तो पाउडर का इस्तेमाल 1 महीने के बाद भी अवॉइड करें आप। इसके अलावा बच्चे को हमेशा सूखा रखें, एक लेयर कपड़े में लपेट के रखें, अंदर का लेयर जो रहेगा वो हमेशा सूती कपड़े का होगा। ठंड में खास करके ध्यान रखना होता है कि सिर, हथेलियाँ और तलवे, ये 3 चीज़ ज़रूर ढके रहने चाहिए ताकि हीट लॉस कम से कम हो बच्चों का। ये सर्दियों में खास ख्याल रखने की चीज़ है। बच्चे को नहला सकते हैं आप कमरे के अंदर गुनगुने पानी में बिना साबुन के पहले 1 महीने तक, जिसमें आप नहलाने के समय में पानी इतना ही रखेंगे टब में जिसमें बच्चे का सर डूब ना पाए, कि अच्छा, गलती से अगर आपके हाथ से छूट जाता है तो बच्चे का सर अंदर ना जा पाए। और जब भी आपका हाथ का मूवमेंट रहेगा बच्चे पे पानी डालने का, तो हमेशा सर से पैर की तरफ, ताकि कभी भी अगर आप पानी डाल रहे हैं तो वो बच्चे के नाक और मुंह में ना चला जाए और उससे एस्पिरेशन या बच्चे को परेशानी या चोकिंग ना हो। बच्चे आते हैं ऐसे कि हम नहला रहे थे, बच्चे ने सरक लिया पानी और उसके बाद इसको सांस लेने में दिक्कत हो गई, नीला पड़ गया। इसके अलावा ध्यान रखने की चीज़ होती है कि पहला टीकाकरण हेपेटाइटिस बी, OPV और BCG, ये बर्थ पे बच्चों को लग जाना चाहिए, नहीं तो 48 घंटे के अंदर कम से कम, ऐसे BCG 3 महीने तक लग सकता है, मगर एट बर्थ लगाना बेस्ट माना जाता है। OPV उसी तरह है, फिर जो आगे 1.5 महीने और 2.5 महीने, 3.5 महीने के टीकाकरण होते हैं वो भी उतने ही ज़रूरी हैं, बट अभी हम लोग नवजात स्थिति की बात कर रहे हैं। इसके अलावा माँ के दूध में विटामिन AE के कम रहता है, तो एक मल्टीविटामिन अगर आपके डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं वो 6 महीने तक देना चाहिए। साथ ही साथ विटामिन डी, सारे बच्चे देखा गया कि ऑलमोस्ट 97% ऑफ इंडियंस आर विटामिन डी डेफिशिएंट, और माँ के दूध में भी विटामिन डी की मात्रा है वो नहीं के बराबर होती है, तो विटामिन डी का जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा डोज दी जाती है, जो टर्म बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी कम डोज दी जाती है, वो कम से कम 2 साल तक बच्चे को ज़रूर दें।
2: नवजात अवस्था में
3: जी

0: बच्चे में क्या कुछ ऐसे लक्षण आए कि अभिभावक को या माता पिता को तुरंत से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत हो सकती है?
1: जी, अगर बच्चा माँ का दूध ना ले रहा हो, सुस्त पड़ा हो, 6 से 8 घंटे में पेशाब ना कर रहा हो, या उसका रंग सफ़ेद या पीला पड़ रहा हो पूरी तरह, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं।
0: थोड़ी भी देरी उचित नहीं है,
1: थोड़ी भी देरी उचित
0: सोचना नहीं है,
1: सोचना नहीं है। या अगर छोटे बच्चे को 100.2 से ज़्यादा बुखार आए, वैसे कंडीशन में भी सोचना भी नहीं है। कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है, बच्चा सुस्त है, इन्फेक्शन ही निकलेगा, हो सकता है शुगर लो होगा उसका, लेकिन वो सारी चीज़ें डॉक्टर ही आपको देख के बता सकता है, चेक करके बता सकता है।
0: घर में जब किलकारी गूंजती है, खुशी का वातावरण होता है, तो हर कोई लालायित रहता है कि बच्चे को गोद में ले।
1: जी,
0: दो बातें होती है, पहली बात तो ये कि मना किया जाता है,
1: जी,
0: दूसरी बात ये होती है कि खतरा होता है, क्या करना चाहिए?
1: देखिए, एक चीज़ आप समझें कि जब NICU में आपने भी देखा होगा कि बच्चों को एकदम आइसोलेटेड रखते हैं, माँ को भी अगर मिलने जाने देते हैं तो मास्क लगा के और एप्रन पहन के, तो ये सिर्फ बीमार बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे बीमार ना पड़े इसके लिए।
0: सही।
1: और ध्यान ये रखें कि गोद में लेने से ही आप सिर्फ प्यार नहीं जता सकते हैं, आप दूर से भी प्यार जता सकते हैं। और घर में किसी को भी अगर सर्दी खांसी जुकाम है, बच्चे के कमरे में ना जाए। और अगर माँ को सर्दी खांसी जुकाम है तो वो दूध अपना ज़रूर पिलाएं, मगर कोशिश करें कि मास्क लगा लें और दूध पिलाएं।
0: तो नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को लेकर आपने इतनी बातें बताई हमारे श्रोताओं के लिए। डॉक्टर उत्सवराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं, समय हो चला है भक्ति संगीत के हमारे इस कार्यक्रम वंदना का। आइए इस कार्यक्रम का आरंभ समूह स्वर में गाए इस देश वंदना से।

स्वर्ग से प्यारी मेरी माँ, सच में माँ जन्म देने वाली हो या फिर कोई और? माँ तो माँ होती है। माँ शब्द नहीं, शक्ति है, जिसके उच्चारण मात्र से ही हमारे शरीर का रोम रोम एक नई ऊर्जा से भर जाता है। समूह स्वर में आप सुन रहे थे ये देश वंदना, भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना। कहते हैं माया से ग्रसित हमारा ये मन धन दौलत अहंकार शक्ति और मोह को ही जीवन समझ लेता है। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, जो आज है वो कल नहीं, जो कल था वो आज नहीं। एक प्रभु का नाम ही है जो सदा रहा है सदा रहेगा, चाहे हम उन्हें जिस नाम से बुला लें, लेकिन वो अपने सभी भक्तों के पुकार को जरूर सुनते हैं। मन में जब उनसे मिलन की बेचैनी हो जाती है, हृदय हमेशा अपने आराध्य की यादों में खोया रहता है, सुदबुद खो जाते हैं हम, हमें कुछ याद नहीं रहता एक अपने प्यारे प्रभु के सिवा। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जिसने भी उन्हें पुकारा है कभी निराश नहीं हुआ। आइए ना अपने ईश्वर की आराधना से आज के इस दिन की शुरुआत करें।

अखिया हरि दर्शन की प्यासी। भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा।

राम भजन कर मन। राम कृष्ण राधा, सच में ये केवल शब्द नहीं, वो औषधि है जिसके जपने या सुनने मात्र से ही हमारे मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। स्नान तो केवल हमारे शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन भगवान का नाम हमारे मन को पवित्र करता है। आध्यात्म की राह में पवित्रता सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि पवित्र मन से किया गया कोई भी काम कभी अपूर्ण नहीं होता। अक्सर भगवान को ढूंढने के लिए हमारा मन बेचैन हो जाता है। हम परेशान हो जाते हैं कि ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देते, उनका दर्शन हमें क्यों नहीं होता। लेकिन कभी सरल मन से सोचिएगा, किसी भूखे को भोजन कराने के बाद उसके चेहरे पे जो संतुष्टि का भाव होता है ना, वही तो भगवान है। किसी प्यासे को पानी पिलाने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, वही तो ईश्वर है। किसी रोते बच्चे को हंसाने के बाद उसके चेहरे पर जो सुंदर सी मुस्कुराहट बनती है ना, वही तो भगवान है। खिले फूलों की खूबसूरती, यही तो भगवान है, और रोज हम इनका दर्शन कर सकते हैं। जरूरत है बस हृदय में पवित्रता की, आस्था की, और अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो जाने की।

0: दुख विपत्तियों और परेशानियों में जब हमारा मन उलझ जाता है ना, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, उस वक्त हमें सब कुछ अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जो भी होगा अच्छा होगा, इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ भी तो अस्थाई नहीं। आज जो धन हमारे पास है वो कल किसी और का था। आज जिस घर में हम रह रहे हैं कल ये किसी और का होगा। जब सब कुछ उन्हीं का है तो फिर चिंता किस बात की। बस हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे, वंदना। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।
1: एपिसोड नंबर 390। 390।

पक्षीराज गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनाते हुए काकभुशुंडी ने बताया कि शायद ही कोई ऐसी योनि होगी जिसमें उन्होंने जन्म नहीं पाया। अपने अनेक जन्मों में उन्होंने योग, जप, तप, दान, पुण्य सभी कुछ किया। कलयुग में उनका जन्म अयोध्या के एक शूद्र कुल में हुआ। उस जन्म में वे मन, वचन और कर्म से भगवान शिव के आराधक थे। शिव भक्त होने का उन्हें मात्र अभिमान ही नहीं था, बल्कि वे अन्य सभी देवताओं की निंदा भी करते। कलयुग में धर्म के विरुद्ध आचरण होता है। डींग मारने वाले पंडित और दंभी व्यक्ति संत कहलाते हैं। स्त्री वश में होकर व्यक्ति मदारी के बंदर की तरह नाचता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सब लोगों के गुण समझे जाते हैं। शिष्य गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता। स्वयं गुरु भी ज्ञान दृष्टि रहित होता है। तनिक से लाभ के लिए लोग गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। ये है कलयुग की विशेषता।

अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर के स्वर में रामचरित मानस गान, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, जानकारी प्राप्त कीजिए आज हमारे इस केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आज की हमारी सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। सुबह 10 फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम होगा। दिन में 11 आज आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। नारी संसार, महिलाओं के लिए हमारा ये कार्यक्रम होगा अपने निर्धारित समय दोपहर 12:30 से। देशभक्ति गीतों का समय होगा दोपहर 1:10 पर। और दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। रोजगार सूचना आप प्राप्त करेंगे दोपहर 2:10 पर। और अपराह्न 3 आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम। आज की हमारी सांधकालीन सभा में शाम 5 युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा तरुण कुसुम। शाम 5:40 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने फिल्म संगीत के हमारे कार्यक्रम में। महाकवि की रचनाओं का समय होगा शाम 6:10 पर। सुनिएगा विद्यापति गीत। ग्रामीण भाइयों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा गांव घर अपने निर्धारित समय शाम 6:30 पर। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे जागरूक गांव। साथ ही गांव घर कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी शाम 7 से। इस कार्यक्रम में किसान श्रोता सुन सकेंगे चर्चा जलवायु परिवर्तन एवं पशुपालन। आज की हमारी सांधकालीन सभा में शाम 7:52 पर

हम आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गाने फिल्म संगीत के हमारे कार्यक्रम में। रात 8:15 ये समय होगा हमारे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार का। श्रोताओं रात 10 आज आप सुनेंगे भारत नेपाल मैत्री संबंध पर आधारित हमारा कार्यक्रम हम एक हैं।

रात 10 बजे आज आप सुनेंगे लोकगीत, और याद रखें रात 10:30 पर आज आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम हम एक हैं। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चंडीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वंद्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित

0: गई थी। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे ये कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुनने वाला सब सुधि श्रोता के आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रम के नव अंक में स्वागत है। हम छी अंजनी और हमरा संगे छथि प्रतिभा प्रीति जी। प्रीति जी, हमरो तरफ से अहाँ के नमस्कार।
0: नमस्कार अंजनी जी, साथ ही समस्त श्रोताओं को प्रतिभा प्रीति का स्नेह भरा नमस्कार। और अंजनी जी, अपने इस कार्यक्रम नमस्कार मिथिला की शुरुआत हम सभी करते हैं हर दिन एक सुविचार के साथ। तो नीत श्लोक है, कहते हैं, उद्यम साहसंग धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः परेते यत्र वर्तन्ते यत्र देवं सहायकृत। अर्थात उद्योग यानी परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये छह गुण जिस भी व्यक्ति के पास होते हैं देवता भी उसी की मदद करते हैं।
1: बिल्कुल। और देखियो, जो मन के जो शक्ति छे, अपन शरीर के शक्ति सब बेस आवश्यकता होइ छे मन के शक्ति के। आ जो मन के शक्ति के हम अहाँ बनि लेलहुँ तो शरीर के शक्ति ओहिठाम किछ महत्व नहीं राखे।
0: बिल्कुल, हम सभी सुनते भी हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर
1: हो ना। तो मन के विश्वास के कखनो कमजोर नहीं हुआ दी। और अपना कार्यक्रम में सब चीज पर से तबै छे तो तहिना श्रोता सब के बेचैन नहीं हुआ दी और हुनका सेट पर ले जाइ छी। आजुक इतिहास किया आज खास।
0: बिल्कुल, आज के दिन अर्थात 28 मई 1883 को महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और हिंदुत्व के प्रखर विचारक विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। मशहूर जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के रचयिता और लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म भी आज ही के दिन यानी 28 मई 1908 को हुआ था। दो अमेरिकी बंदर एबल और बेकल ने अंतरिक्ष की सफल यात्रा 28 मई 1959 को की थी। 28 मई 2008 की बात करें तो नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही का अंत हुआ और देश को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। प्रतिवर्ष 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य के प्रति उसके लिए कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य होता है महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, खास करके महिलाओं के जो शारीरिक है और मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए जागरूकता फैलाना और उनके स्वास्थ्य अधिकारों की वकालत करना, अर्थात कि उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी अधिकार है उनके लिए, उनके लिए सजगता फैलाना, ये उद्देश्य होता है।
1: और आइए हम सब बी डी सावरकर जी के जन्मदिवस सेहो मना रहल छी।
0: हाँ हाँ,
1: और देखियो पाबनि अछि आइ प्रतिभा जी।
0: हाँ, पाबन
1: यानी बकरीद के पाबन, जे इस्लाम धर्म के अनुसार पहले मनेने छलखिन हजरत मोहम्मद साहब जे छलखिन, या हुनकर पुत्र के शहादत के संबंध में मनायल जात। आ देखियो, जे हुनका एहि दुआरे मनायल जात अछि जे त्याग, बलिदान और अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास के प्रतीक ई पावन अछि।
0: बिल्कुल,
1: और एकरा ईद उल अजहा सेहो कहल जात अछि
0: तौर पर। और चांद पर निर्भर होता है, जो चांद दिखने के बाद इसे मनाते हैं।
1: हाँ,
0: और छुट्टी की बात करें तो केंद्र सरकार ने भी बकरीद की छुट्टी 28

0: में यानी आज दी है, विद्यालय में या फिर कार्य क्षेत्र में, हर जगह कार्यालय में हर जगह आज छुट्टी दी जाती है। विशिष्टता की बात करें तो ईद की नमाज होती है सुबह मस्जिद में, ईदगाह में खास नमाज होते हैं, और बकरा की, बकरे की कुर्बानी दी जाती है, और सेवई खीर, घरों में दावत, नए कपड़े, और ईदी की जो प्रचलन है अपने से छोटे को, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ईदी देते हैं, नेक देते हैं, आशीर्वाद जिसे हम कह सकते हैं इस रूप में वो देते हैं।
1: और बकरा के जो कुर्बानी दिल जाते हैं, ओकरा जो मांस होते हैं वो बंटवारा कैल जाते, मतलब रिश्तेदार में गरीब में बंटवारा कैल जाते हैं। और जो हजरत मोहम्मद साहब छलखिन, हुनकर हजरत इब्राहिम साहब छलखिन, हुनका बेटा जो छलखिन हजरत इस्माइल, हुनका शहादत के शहादते कुर्बानी दे देने छलखिन वो अल्लाह के परीक्षा के लेल, तो अ दुआरे बाँट के हुनका श्रद्धांजलि एक तरह से कह सकते हैं वो दिल जाए और याद कैल जाए पावन में। तो छल अपन सब के बकरीद के पावन, और कोनो भी जो पावन है ना प्रतिभाजी, एकटा संयम के पावन है। पावन में अपना सब प्रेम और सौहार्द समन्वय और एक दोसर के सम्मान करे छी,
0: बिल्कुल,
1: तो तखने पावन मनेवा के विशेष महत्व है।
0: और पर्व त्यौहार की बात आपने की है तो हमारे मिथिला में खास करके तो हर दिन पर्व त्यौहार कहते हैं कि हर दिन हर महीना अपने आप में पावन होता है, और कुछ न कुछ पूजे पाठ या फिर पर्व त्यौहार मनते ही रहते हैं। और अभी यदि बात करते हैं ये ज्येष्ठ महीने की, अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास इसे कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम महीने में, इस महीने में जो जो भी पूजा पाठ किया जाता है, दान धर्म किए जाते हैं, कहते हैं कि वो 100 गुना अधिक बरकत होता है उसमें। तो इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धार्मिक कार्य होने चाहिए, मतलब आप जो घर में दिनचर्या दैनिक करती हैं उसके साथ कुछ समय ईश्वर का भजन, ध्यान, कीर्तन, पूजन, ये सब, बहुत ही, या फिर आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रही हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी होने वाली है सबको, बच्चे की भी और जो बड़े हमारे घर के जो कामकाजी हैं उनकी भी, तो
1: कते ठाम तो आधा गर्मी छुट्टी बीत
0: चुका है, तो उसमें घूमने जाने का जो बात है तो उसमें आप राजगीर जा सकते हैं या और भी तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहां आप जाके घूम के और आ सकते हैं, प्लानिंग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सब जगह जाने से पहले ये पहले सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसके हिसाब से वहाँ के जो की रहन सहन है, वहाँ का जो वातावरण है, मौसम है, खास करके
1: समय अनुकूल सब कुछ, पहनावा,
0: कपड़े वहाँ के लिए हम ले लें उस तरह से, और फिर जाने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अभी जो गर्मी का जो मौसम चल रहा है, देखिए ना कभी अचानक से तूफान, तेज बारिश का सामना करना पड़ रहा है, और दिन को बहुत ही तेज धूप निकलने से हम सभी परेशान हो जाते हैं, तो खास ध्यान देना होता है ऐसे मौसम में हमारे स्वास्थ्य का। आपको देख रहे हैं कि आप सर्दी खांसी से बहुत अधिक परेशान हैं, प्रभावित हो चुके हैं।
1: सबसे पहले गप की है कि बहुत गर्मी छे और हम यहाँ बाहर से जाए छी ना, तो इच्छा होती रहे कि ठंडा पानी पीवी,
0: और यदि पी लेती है तो बस जो आप अभी झेल रही है झेलना पड़ता है, भुगतना पड़ता है।
1: कारण है हम सब बुझे नहीं छे कि तुरंत ठंडा पानी पीला से सर्द गर्म भ जाए छे, जना अपने सबके मिथिला में कहल जाते है जे बड़ गर्मी पड़े तो बड़ ठंडा पानी नहीं पीबाक चाहिए और तुरंत नहीं पीबाक चाहिए, क्या तो वह सर्दी के विशेष।
0: देखिए आप ये बात तो जान रही हैं कि नहीं पीना चाहिए, जानती हैं लेकिन मानती नहीं है, तो बस मानने की आवश्यकता है अंजनी जी। हम जानते तो बहुत कुछ होते हैं लेकिन उसे मानते नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कि दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो वो दुर्घटना सिर्फ सड़क पर ही नहीं, हमारे साथ हमारे घर में भी ये तो दुर्घटना, मतलब ये तो खराबी ही है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए। हम बीमार हो जाते हैं तो फिर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं,
1: हमरा हां कह रहल छी कि हम
0: अगली बार से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करें।
1: कारण
0: और खुद की बात तो हम करते ही हैं, इससे पहले भी हम सभी करेंगे, हमारे घर की जो घर के बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, देखिए हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप खुद ही बीमार हो जाती हैं तो आपके घर के बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले अपना ध्यान रखना होता है, और साथ ही हमारे बुजुर्ग के लिए खाना पीना क्या, इस मौसम के अनुसार क्या आवश्यक है, हमारे बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, ये सब चीज़ बहुत ही ध्यान देने योग्य है, खास करके मौसम जो जिस हिसाब से कह सकते हैं कि आज्ञा दे तो वैसा ही करना चाहिए। तो अभी का जो मौसम है बहुत ही गर्मी है, अचानक से बारिश हो जाना, अचानक से तेज़ तूफान, फिर मौसम रात के समय थोड़ा सा ठंडक देना, फिर दिन में बहुत ही

0: गर्मी, तो ये सब चीज बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। और कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में
1: ध्यान देवा वाला बात छे कि समय पर सबकी श्रोता सबके जेबाक चाहिए।
0: तो आइए सुनवाते हैं एक मैथिली गीत आप सभी को।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को हम हर दिन सुनते हैं हालचाल के माध्यम से, तो प्रस्तुत कर रही हैं अंजनी कुमारी। आइए सुनते हैं अंजनी कुमारी से हालचाल।
4: धन्यवाद। आप सुनो हमरा सा हालचाल। बकरीद के पावनि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवा के लेल जिला आ पुलिस प्रशासन पूरा तरह से सतर्क अछि। SSP जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के नेतृत्व में पुलिस बुध दिन फ्लैग मार्च केलक। SSP लोक सब के विधि व्यवस्था आ सुरक्षा के भरोसा दिलन। दरभंगा समाहरणालय में बुध दिन DM कौशल कुमार, PHED के अभियंता सब आ संवेदक सब के संग पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लऽ कऽ बैसार कलन। ओ कहलन जे जिला में पेयजल संकट उत्पन्न भेला पर संबंधित अधिकारी सब के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कयल जात। जतः पेयजल के समस्या अछि ओतः तत्काल टैंकर के माध्यम से पेयजल समस्या के खत्म कयल जा सकैत अछि। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी के नेतृत्व में एकटा प्रतिनिधि मंडल पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से मिलल। हुनका ज्ञापन द राज्य के 211 नव सृजित डिग्री कॉलेज सब में मैथिली संस्कृत आ उर्दू विषयक पढ़ाई शुरू करबाक मांग कैलन। बकरीद के लऽ कऽ बृहस्पति यानी आई DMCH के मेन OPD बंद रहत। आपातकालीन विभागक चिकित्सा व्यवस्था सामान्य रूप से पूर्ववत संचालित रहत। ज्ञातव्य हो जे साल में केवल 10 दिन मेन OPD में रजिस्ट्रेशन नहीं होत। सब सरकारी प्रारंभिक विद्यालय सब में 30 मई के मानसिक स्वास्थ्य आ भावनात्मक कल्याण थीम पर अभिभावक शिक्षक गोष्ठी हैत। बच्चा सब से प्रेम आ धैर्य से बात केनाई, हुनका भावना के समझनाई, अन्य बच्चा से हुनका तुलना करबाक बदला अपन बच्चा के छोट छोट उपलब्धि सब के प्रोत्साहित करबाक सलाह अभिभावक के देल जात। आयासा के पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर जारी कऽ देलन अछि। ओ जिला शिक्षा पदाधिकारी आ समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के 30 मई के होबय वाला PTM के आवश्यक तैयारी करबाक निर्देश देलन अछि। कमतौल प्रखंड के अहिल्या स्थान स्थित सभागार में बुद्ध के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत धर्मगुरु सभक संग समन्वय बैसार कयल गेल। एकर आयोजन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस आ कार्ड्स संस्था द्वारा कयल गेल। कार्यक्रमक अध्यक्षता SDPO

अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है।

0: साथी
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
3: कमतौल प्रखंड के अहिल्या स्थान स्थित सभागार में बुद्ध के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत धर्म गुरु सभक संग समन्वय बैसार कयल गेल। एकर आयोजन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस आ कार्स संस्था द्वारा कयल गेल। कार्यक्रमक अध्यक्षता SDPO सदर 2 शुभेंद्र कुमार सुमन आ संचालन कार्स संस्था के जिला समन्वयक नारायण कुमार मजुमदार कयलनि। बैसार में बाल विवाह मुक्त भारत आ दरभंगा बनेबाक लेल ठाम ठाम जागरूकता अभियान चलेबाक सामाजिक गतिविधि सँ बच्चा के जागृत करबाक आ सरकारी योजना सँ जुड़बा पर चर्चा कयल गेल। जाले प्रखंड क्षेत्र में सोम दिन के साँझ आ मंगल दिन के भोर में आयल तेज आंधी आ बरखा सँ जनजीवन के पूर्ण तरह सँ प्रभावित कयलक अछि। कतेको ठाम घरक छप्पर आ एस्बेस्टस तक उड़िए गेल। सबसे बेसी दिक्कत ठाम ठाम बिजली आपूर्ति ठप भेलाक कारणे जनजीवन अस्त व्यस्त भऽ गेल। गर्मी के मौसम के देखैत दिल्ली रूट पर यात्री सबके अतिरिक्त भीड़ के देखैत रेलवे मुख्यालय समस्तीपुर के रास्ता में बरौनी से नव दिल्ली आ दरभंगा से नव दिल्ली के बीच क्लोन स्पेशल ट्रेन चलेबाक निर्णय लेलनि। दुनू ट्रेनक परिचालन 1 जून से 15 जुलाई धरि प्रत्येक दिन 15 जुलाई धरि प्रत्येक दिन कयल जायत, जाहि सँ एहि रूट पर यात्री सबके भीड़ नियंत्रित होयत। समस्तीपुर जिला में भूतपूर्व सैनिक हुनक विधवा आ वीरांगना सबके समस्या सबके समाधान के लेल एकटा महत्वपूर्ण पहल कयल गेल अछि। शहर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालयक उद्घाटन जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा कयलनि। एहि अवसर पर बहुत संख्या में पूर्व सैनिक वीरांगना सब आ हुनक परिजन उपस्थित छलाह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में PG चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2024 से 26 के 1 जून के परीक्षा आब 4 जून के हैत। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर इंसान अली द्वारा जारी सूचना के आधार पर 1 जून के परीक्षा अपरिहार्य कारण से स्थगित कऽ देल गेल अछि। परीक्षार्थी सब से अपील कयल गेल अछि जे ओ नव तिथि के अनुसार परीक्षा में शामिल होथि आ कोनो प्रकार के भ्रम के स्थिति से बचबा के लेल विश्वविद्यालय के आधिकारिक सूचना पर नजर बनेने रहित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय वरीयता के आधार पर चक्रानुक्रम में अगला 3 वर्ष अथवा सेवानिवृत्त जे पहले से भ चुकल छथि तिनका लेल PG दर्शन शास्त्र विभागक अध्यक्ष MRM कॉलेज के डॉक्टर शिखर वासनी के नियुक्त कयल गेल अछि। ऐसे संबंधित अधिसूचना में कहल गेल अछि जे ओ आदेश 1 जून से प्रभावित होयत। बताबे चली जे वर्तमान विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवानंद झा 31 मई के सेवानिवृत्त भऽ रहल छथि। एहि संग हालचाल संपन्न होइत अछि।
4: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: हाल चाल के बाद स्वागत करते हैं आप सभी का अपने कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। और अंजनी जी, मौसम की जानकारी साझा करते हैं तो अधिकतम तापमान की बात करते हैं आज की। तो आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान देखें तो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
3: और देखिए जो मौसम में तो उतार चढ़ाव एखन होते अछि, मुदा अनुमानित तिथि तो अनुमानित समय अनुमानित अवधि अपने सब बताए दै छन श्रोता सबके। एखन बदलैत मौसम में हम ई नै बुझि सकै छी जे कखन बरखा चलि आबैए, कखन की भ

0: चुकल है, प्राकृतिक जे आपदा छै ओ तो अपना सबके नहीं होते बता सकै छी, मुदा अनुमानित बता सकै छी। और अपने सब चर्चा करै छलो है जे आई बी डी सावरकर के जन्मदिवस छल, तो बी डी सावरकर एक देश में जे कोनो महान वैज्ञानिक भेलखिन या महान शास्त्री भेलखिन जे भी भेलखिन, हुनकर जे जन्मदिवस अपने सब मनाबै छी ओकर किछु न किछु उद्देश्य होइत अछि।
1: बिल्कुल, और इन्हें कहते हैं हम सभी स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, इस नाम से इन्हें नवाजा गया है। और इनकी जयंती हर वर्ष 28 मई को मनाई जाती है। आज ही के दिन 1883 में नासिक के आसपास भागुर गाँव महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ये भारत के महान क्रांतिकारी, लेखक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेना थे। इनका उपनाम स्वतंत्र वीर सावरकर है अंजनी जी।
0: और देखियो जे इतिहासकार से हो चले थे,
1: बिल्कुल
0: स्वतंत्रता सेनानी से कहवे के लो अहाँ, क्रांतिकारी चले थे, चिंतक से हो चले, मतलब जे अपन जे हिनकर चलन हन बुद्धि ओकरा सबके बीच अपन समर्थन से हो दे छलखिन। या कवि चले और प्रतापी से हो चले, ओजस्वी वक्ता चले से हो, और चूंकि एखन कहलूँ कि राजनेता, अपना सबके देखियो जो देश में एहन एहन विद्वान भेलखिन ये, तर्कवादी भेलखिन ये, जे अपना सबके देश में अपन सबके देश के आजाद करवा में अपन जे सहयोग छलन हुनकर, योगदान छलन हुनकर, ओ दैते लाए।
1: बिल्कुल,
0: और ओकरा अपने सब याद करें।
1: बिल्कुल, और इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को यदि जाने अंजनी जी, तो स्वतंत्रता संग्राम में वीर सावरकर की क्या भूमिका रही है। तो सावरकर ने कम उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन अंत करना। इन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को परिभाषित करने वाली पुस्तक लिखी। हिंदुत्व मतलब हिंदुस्तान से संबंध रखने वाले, प्रेम रखने वाले, वो पुस्तक थी हु इज अ हिंदू। अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में और ब्रिटिशों के द्वारा सिपाही विद्रोह कहे जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पहली पुस्तक उन्होंने प्रस्तुत किया था। बिल्कुल,
0: और देखिए जी कार्यक्रम में बहुत चीज छे जो प्रेस का अपने सवाने छी, और जानकारी और दो दिन श्रोता सबके जे विनायक दामोदर सावरकर जे छलखिन ओ कविता के गप करे छलखिन, ओ अछि मतलब कविता जे लिखने छले थिया, जो अस्तुते आ सागर तुया किनारी, ई कविता देशभक्ति आ प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत छल।
1: बिल्कुल,
0: चूंकि देखियो देशवासी जे अपने सब छी, ओहिमे जते भी क्रांतिकारी भेलखिन या अहिंसावादी भेलखिन, ओ सब अपना देश से जुड़ल, माटि पानि से छलखिन या प्रकृति से जुड़ल छलखिन या, ओ सब समाज सुधारक, क्रांतिकारी होइत एकटा कवि सेहो छलखिन। अपने सब जानै छी जे जतेक भी अपना देश के लेल, आजादी के लेल लड़लखिन, ओ हर समय एकटा युद्ध जका सबटा बात करै छलखिन या, जे केना अपना देश में अमन और चैन की स्थिति आयत।
1: बिल्कुल, और इन्होंने जो किताब लिखी थी हिंदुत्व, जेल में जो किताब लिखी, तो उसमें हिंदू को धर्म नहीं सांस्कृतिक पहचान बताया था। और इनके विचार की यदि बात करें तो ये पवित्र भूमि, अपने जो भारत भूमि है इसे पवित्र भूमि मानने वाले, और हिंदू धर्म से बड़ा हिंदू राष्ट्र इनका जो नारा था ये था कि हिंदू धर्म से बड़ा हिंदू राष्ट्र। हिंदू का मतलब हिंदुस्तानी, ये हम सभी हिंदुस्तान में रहने वाले जितने हैं सभी
0: लोग, हाँ
1: बिल्कुल। और जातिवाद के खिलाफ थे ये, जो छुआछूत को मिटाना, विज्ञान समर्थक थे ये, और भाषा शुद्धि इनकी एक खासियत थी। लेखक और कवि थे ये तो आपने बताया ही है। और वीर सावरकर की जयंती की यदि हम बात करते हैं तो कैसे मनाया जाता है, हमारे देश में कैसे मनाते हैं, तो सरकारी कार्यक्रम होता है, महाराष्ट्र सरकार संसद में पुष्पांजलि तैलचित्र लगाकर इन्हें जो है स्वागत इनका किया था, इनके जन्मदिन को और विशिष्ट बनाया था। स्कूल कॉलेज में निबंध, वाद विवाद, कविता पाठ, इनके जीवन पर नाटक आदि फिल्माया जाता है, ये सब किया जाता है। और इस तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती है, नासिक, मुंबई, पुणे में जुलूस निकाली जाती है, झांकियाँ निकलते हैं इनके जन्मदिवस के अवसर पर। तो बहुत तरह के काम होते हैं। अच्छा, सामाजिक जो ये थे

0: इतने जो प्रिय प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, तो इनके जन्मदिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन भी होता है, पौधारोपण भी किया जाता है और स्वच्छता अभियान चलाई जाती है। बहुत तरह के इस तरह के कार्यक्रम सब चला करके इनके जयंती को, जन्मदिवस को खास बनाया जाता है। बिल्कुल।
1: और इनका नारा चलन यह जे सब राजनीति के हिंदूकरण करी आ हिंदू धर्म के सैन्यकरण करी, एक राष्ट्र और एक संस्कृति।
0: बिल्कुल।
1: एकटा अखंड भारत के सांस्कृतिक एकता के लेल हिनक मूल मंत्र यह छलन।
0: बिल्कुल।
1: जे जत्ते अपन देश है ओकरा एक राष्ट्र बनाबी और एकटा संस्कृति रहे अपन सबके।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि लोग सबके एक सूत्र में बांध सकी।
0: इनका कहना था
1: कार्यक्रम के,
0: इनका कहना था बिल्कुल एक राष्ट्र, एक ईश्वर, एक भाषा और एक आशा। साथ ही कहते थे शत्रु का शत्रु मित्र होता है, कैलेंडर बदलो करेक्टर नहीं। तो ये सब चीज इनकी जो खासियत है हम सभी हर दिन याद रखेंगे।
1: और कार्यक्रम के एक सूत्र में बांधवा के लिए अपने सबको श्रोता सबक के समक्ष सब चीज आना पड़ित है, परस पड़ित है। तो अखन समय भ गेल छ क्या एक मनोरंजन क दियन श्रोता सब
0: फिल्म संगीत सुनवा के।

0: आ देखू प्रतिभा जी जे हमरा लागैए गीत श्रोता सबके सेहो पसंद आयल हेतनि, कियाकि अपने सब सब दिन श्रोता सबके समक्ष आबै छी आओर लगैए जेना पहिल बेर मिलै छी। ई अपन कार्यक्रमके जे निरन्तरता छै प्रतिभा जी, श्रोता सबके सबसे जे प्रेम छै अपना सबके, ई अलग एकटा अलग प्रभाव सब दिन छोड़ैत अछि।
1: निश्चित रूपसँ
0: तैं अपना सबके लगैए जे नव नव भेंट भऽ रहल अछि आओर कार्यक्रमके सुन्दरता केहन छै ओ तऽ श्रोते सब बतेथिन, आओर एहिमे की सब जोड़ैके छै ओहो श्रोते सब बतेथिन। किएक तऽ देखियौ ने, बियाह सबके होइ छै आ बियाहमे किछु अलगे अलगे विध होइ छै, केओ किछु विधि करै छथिन, केओ किछु विधि करै छथिन, विधि वएह छै लेकिन ओकर प्रकार अलग अलग छै। तऽ तहिना अपने सब कार्यक्रममे प्रकार जे अलग अलग करबै तऽ ई तऽ श्रोते सब बतेथिन।
1: आओर खास करके अपने इस नमस्कार मिथिला कार्यक्रम की जो गुणवत्ता है इसकी यदि बात करते हैं, तो इसमें सूचना जैसे कि आपने हालचाल के माध्यम से अपने सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को परोसा है और मनोरंजन हम सभी करवाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले एक मैथिली सुगम संगीत सुनवाते हैं, फिर हम सभी फिल्म संगीत की ओर उन्हें ले जाते हैं। तो उद्देश्य ही हमारा यही होता है कि सूचना और मनोरंजन साथ में हो।
0: और जीवन में हर चीज रहबाक चाहिए, और जीवन में हर चीज रहबाक चाहिए। याद आयल प्रतिभा जी जे गप केलहुँ तऽ एकटा चीज देखै छी लोक सब में, आत्मसम्मान तो खूब छन अपना सब में जी, मतलब हमर आत्मसम्मान बचल रहे। मुदा जखने आत्मसम्मान के गप करबै तऽ ओहिमे अनुशासन जोड़ देबै तखने आत्मसम्मान छै।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं हम इसे, आत्मसम्मान और अनुशासन के बीच जो संबंध है तो

0: आपने कहा कि निश्चित रूप से याद रखना चाहिए, तो एक दूसरे के पूरक इसे हम कह सकते हैं, आत्मसम्मान अर्थात कि अपनी खुद की
1: खुद
0: इज्जत, और
1: हाँ
0: अनुशासन यानी अपने आप पे कंट्रोल रखना।
1: कंट्रोल
0: तो
1: रखना
0: आपका
1: है।
0: जिस तरह का बिहेव है, आपका जिस तरह का स्वभाव है, व्यवहार है, उसी के हिसाब से आपको जो
1: चलो
0: दूसरों से
1: पड़ा।
0: सम्मान तो मिलेगा ही, लेकिन आप आत्मसम्मान जो है खुद के नज़र में भी आप अनुशासन यदि अपने जीवन में रखती हैं तभी उस तरह से अपने आप को संतुष्ट रख पाती हैं।
1: संतुष्ट रख
0: बिल्कुल
1: पाबै छै। अपना सबके जीवन में सेहो सिखायल जाइत अछि जे आगू वाला जे छोट छथिन हुनका प्रेम और नमहर के सम्मान जब देबै तो अपने आप छै जे आगू वाला जरूर अहाँ के सम्मान
0: निश्चित
1: करतै।
0: तौर पे।
1: और जखने अहाँ में ई नहि अछि अनुशासन, सबसे बड़का चीज भ गेलै ई जे अपना बाजै पर कंट्रोल, अपन सार शरीर के जे छै से कंट्रोल, हर चीज पर जब अहाँ के निरंतरण नियंत्रण रहत तो अनुशासन अपने आप जीवन में आबि जेतै।
0: हाँ बिल्कुल। और अपनी दैनिक दिनचर्या पे भी देखिए ना, अनुशासन जो आत्मसम्मान बनाता है, तो सबसे पहले आप कब उठना है, कब आपको क्या काम करना है, किस हिसाब से आपको अपनी जो दिनचर्या है उसे चलानी है। हो सकता है कि कल के दिन आपके लिए कुछ विशेष कार्य उपस्थित हो जाए, तो उसे आपको कैसे निभाना है, तो ये सभी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है
1: जीवन
0: उसमें जो,
1: हाँ
0: हाँ उसमें जो हम सभी किस तरह से अपने हर काम को सुचारू ढंग से कर पाते हैं, हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी है, या जो कामकाजी हैं उन्हें बाहर भी अपने कार्यालय भी जाके काम संभालनी होती है, तो इस तरह से वो हर चीज को जो एक ढंग से तरीके से करते हैं, अनुशासित होके करते हैं, तो सब कुछ संभव हो पाता है समय रहते हुए।
1: समय रहे
0: इसीलिए
1: तो हाँ
0: हाँ, और इस तरह के जो लोग हैं देखिए ना, कार्यालय आप स्कूल की ही बात करते हैं, मान लीजिए कोई शिक्षिका है या शिक्षक है या कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो घर में काम के कारण उनका थोड़ा सा लेट हो गया, देर हो जाती है उनके लिए, तो जाते हैं 1 दिन 2 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, तो इस तरह से उनकी आदत सी हो जाती है, तो
1: हाँ
0: वहां पे
1: हाँ
0: सम्मान उन्हें कैसे प्राप्त होगा।
1: नहीं,
0: और दो बातें यदि सुननी पड़ी या ऐसे भी बोल दिया गया कि आप तो हर दिन देर से आते हैं, तो खुद में भी अपने आप में आत्मसम्मान में उनकी लगती है कि कमी
1: कतौ
0: महसूस
1: हमरा
0: होती
1: में
0: है
1: कमी है।
0: निश्चित तौर पे। तो अनुशासन यदि है हमारे जीवन में तो हम आत्मसम्मान को बना के रख
1: रख
0: पाते हैं।
1: सकै छी।
0: बिल्कुल
1: और देखियो ना जे अनुशासन कोनो बहुत बड़ी चीज नहीं छे, अपन सब के जीवन में हर चीज जो समय पर करै छी, अनुशासन मतलब की भले सब चीज समय पर केनाई।
0: बिल्कुल
1: और एगो एगो एहन क्रिया अछि जे अहाँ के कार्य के सही दिशा में लऽ जाइत अछि। और
0: निश्चित
1: अपना
0: तौर पे
1: सबके जीवन से सबसे महत्वपूर्ण अंग इएह छै जकरा अभ्यास कह सकै छी, जेना दैनिक जीवन में लगातार प्रयास के बाद ई मतलब भऽ जाइत अछि लक्ष्य के प्राप्ति दिस अपने सब जे लागल रहै छी। नीक आदत के जो छोड़ दै छी, खराब आदत के जो छोड़ दै छी और व्यवस्थित रह लागै छी तो ओकरे ना अनुशासन कहल जाइत अछि। जब आगू वाला के अहाँ कोनो चीज एहन करैत देखलियै जे अहाँ के नहीं निक लागल और अहाँ समझेलिए, अहाँ समझलिए जब अपने अहाँ निक छिए और आगू वाला के समझेबै तो आगू वाला के ई हेतै जे ओह ई आदमी बढ़िया छथिन और हमरा समझेलखिन या तो किछु कारण छै तें समझेलखिन,
0: निश्चित तौर पे
1: तो हुनका ई हेतन सम्मान के दृष्टि से अहाँ के देखता, तो अहाँ अनुशासन सेहो हुनका सिखा देलियनि, अहाँ सब चीज हुनका सेहो सिखा देलियनि, हुनका से संबंधो अहाँ के निक बनि गेल और आत्मसम्मान तो अहाँ कहिए सम्मान हुनको से भेट गेल, अपना अंदर एकटा खुशी भेल कि भाई हम ओ आदमी के मतलब निक बना सकलिए, ओ आदमी के अपन अपना तरफ से किछ निक सिखा सकलिए, तो
0: और
1: वह न छी
0: हाँ,
1: ना आत्मसम्मान
0: और
1: छी।
0: आत्मसम्मान जो है अनुशासन सिखाता है, और अपने आप को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं अपने जीवन में, दैनिक जीवन में या अपने कार्य क्षेत्र में, हमारा बेहतर कैसे हो, हम अपने क्षेत्र में बेहतर कैसे करें, ये हमें अनुशासन ही सिखाता है। और यदि जानती हैं यदि अनुशासन नहीं हो जीवन में तो मनुष्य रोबोट बन के रह जाएगा, मंडी बन के रह जाएगा कि हम इतना करते हैं, और इसके साथ डिप्रेशन जो अवसाद है वो कहीं ना कहीं आ जाता है कि बहुत हो सकता है कि आपके यहाँ हमारे घर से ज्यादा काम की जिम्मेदारी हो, तो करना करना तो आप ही को है, आप करती भी हैं, लेकिन बोझ बना के यदि करती हैं कि हमारे पास तो इतना काम है, हम तो बहुत सारा काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तनावग्रस्त आप अंदर ही अंदर हो जाती हैं, और ये तो सही संकेत नहीं होता है।
1: और देखिए समाज में अपना सबके जोड़े के लेल या देश से जोड़े के लेल पहले परिवार से जुड़े पड़त। परिवार में जब वहाँ के सब चीज पर नियंत्रण या जना वाणी पर कहलों नियंत्रण, अपन व्यवहार पर नियंत्रण, अपना नियम पर नियंत्रण, तो सब चीज के जोड़ के जो चले छी तो कतौ न कतौ

0: विश्वास ये हमरा जे अहाँ के आत्मविश्वास अहाँ के आत्मसम्मान के जोड़त ई अनुशासन में जब अहाँ रहे छी तो अवश्य हैत। और कठोर जरूर छे, कोनो चीज जीवन में सरल थोड़े छे प्रतिभा जी, और सरल जखने नहीं छे तखने जीवन जी सके छी। प्रकृति देखियो ने खन प्रकृति कखनो रौद्र रूप रौद जे होइए तो रौद्र रूप धलै छै
1: बिल्कुल,
0: और कखनो देखियो बरखा भेला के बाद कनी ठंडक महसूस होइए तो बड मन प्रसन्न होइए। तहिना जीवन चलत रहै छै अपना नियम से, और हम अपना जीवन में चलित रहे छी।
1: और अनुशासन की बात करते हैं तो हर चीज में अनुशासन की हमें आवश्यकता होती है। जैसे कि आप सोशल मीडिया ही पे रहते हैं, यदि हर हाथ में मोबाइल है, हर कोई जो कहते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो जानकारियों के लिए या मनोरंजन के लिए यदि मोबाइल लेके ही बैठते हैं तो आप बैठिएगा 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए की टाइम है तो, और घंटों निकल जाने से आप ही की समय की बर्बादी होती है। आप समझ नहीं पाती हैं कि कितना समय मेरा निकल गया। तो अनुशासन तो हर चीज में, अब पूजा पाठ की बात हम करते हैं तो जो कामकाजी हैं, जो घर परिवार वाली महिलाएं हैं जिन पे जिम्मेदारी है, जैसे कि बड़े बुजुर्ग हैं अब उन पे बहुत अधिक जिम्मेदारी होती नहीं है, लेकिन जो हमारे आपके उम्र की होती हैं जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, वो यदि 4 घंटा बैठ के पूजा पाठ ही करने में लग जाती है तो घर का काम फिर कैसे होगा। तो ये सब चीज, हर चीज में अनुशासन चाहिए,
0: असंतुलित जीवन नहीं, दिनचर्या के असंतुलित नहीं करवाक चाहिए। हाँ। तखने अपने सब अनुशासन के संग चल
1: निश्चित तौर पे। और अनुशासन को बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जेल के समान है या आत्मसम्मान अकर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हम सभी को सोचना होगा कि अनुशासित जीवन यदि हमारी है तो आत्मसम्मान के साथ हम अपने जीवन को, दिनचर्या को आगे बढ़ा सकते हैं और खुशहाल रह सकते हैं।
0: हमारा ख्याल है प्रतिभा जी जे अनुशासन जे छे अपना सबके समय प्रबंधन सेहो सिखा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, समय प्रबंधन ही तो अनुशासन है हर चीज में, हर काम में। तो इस तरह से, और समय प्रबंधन की बात की है तो कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में भी हम सभी समय सीमा से बंधे होते हैं। और समापन की ओर अब कार्यक्रम है तो चलते चलते अपने श्रोताओं के लिए एक प्यारा सा फिल्म संगीत प्रस्तुत करते हैं, फिर लेंगे इस कार्यक्रम के आज के अंक से विदा।

0: बहुत सुंदर गीत। और देखियो प्रतिभा जी, जे समय अनुसार जे गीत होय छै तऽ बड़ नीक लागै छै।
1: बिल्कुल।
0: आर की छै जे अपना सबके समय से बांधल छी तऽ श्रोता सब से लऽ लै छी।
1: अब लेना पड़ेगा विदा। तो नमस्कार मिथिला।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी।
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराए लगैत अछि ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाएब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ, प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्स, साथ ही न्यूज ऑन AIR इस ऐप पर। सुबह के 8 होने वाले हैं। अब समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
6: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

0: शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नव निर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
3: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
4: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराव और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
5: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और

0: लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के 7 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैनुल अक्वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतीज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवे, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफटॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वाधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक इको निजाम के साथ मजबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरिया को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट के इन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तआवुन, बरवक मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुक्काम को हिदायत दी है कि मुल्क की सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैर कानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएं और गुज़िश्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदम कर दिया जाए। बीकानेर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद के करीब राजस्थान के सरहदी जिलों में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वजारत दाखिला ने जिला मजिस्ट्रेट्स को ये इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सभी बैंक सरहदी इलाकों में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कानूनी और माली तकमील करें, बड़े कारोबारी कंपनियों की तस्दीक करें और उनके मालियाती जराए का पता लगाएं, फर्जी खातों यानी म्यूल अकाउंट और कंपनियों का पता लगाएं, फर्जी आधार कार्ड की शनाख्त करें और सरहद पार स्मगलिंग को रोकें। एक बयान में वजारत दाखिला ने कहा है कि सरहदी जिलों को हिदायत दी गई है कि वो जराइम और मुनशियात की स्मगलिंग के जराए, तौर तरीकों और नेटवर्क का गहराई से जायजा लें और इस हतमी हल तलाश करें ताकि सरहदी इलाकों में इस तरह के मसले फिर से पैदा ना हों। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफ अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में अवामी सहूलियात से मुतालिक खिदमात, तालीम और देही बुनियादी ढांचे के तकरीबन 1 दर्जन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला गांधीनगर की कलोल तहसील से अपने दौरे का आगाज करेंगे और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के इकदाम के तहत तैयार की गई अवामी

0: सहूलियात को वक्फ करेंगे, जिनमें जेठवा गांव की झील, नौ तामीर शुदा तीन लाइब्रेरियां और प्राइमरी स्कूल की नई इमारतें शामिल हैं। शाम को जनाब शाह अहमदाबाद में प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और 16 और भीमजीपुरा भारत माता स्क्वायर माता उमिया धाम कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला आइंदा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी का जायजा लेने के लिए शाही बाग सर्किट हाउस में एक आला सतही मीटिंग में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबिना कमेटी CCEA ने PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान काबीना के फैसले से मुतालिक ये ऐलान किया।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरीद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक़िद हो रही है। ईद उल अज़हा हजरत इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त और वज़ी इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्यौहार खुद को वक्फ करने, ईसार और बेलौस जज्बे की अलामत है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि ये त्यौहार मुल्क के शहरियों को खासतौर पर माली तौर पर कमजोर अफराद के लिए इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करने की तलकीन करता है। उन्होंने अवाम से मुआशरे में मोहब्बत और इत्तेफाक को फरोग देने के जज्बे को मुस्तहकम करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरी रियासत में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इंतजामिया ने आज बकरीद त्यौहार के खुशउसलूबी से मनाए जाने के तनाजुर में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
0: लोग नजदीकी मसाजिद में ईद उल अज़हा की खुसूसी नमाज अदा कर रहे हैं। फरीज़ा कुर्बानी नमाज के बाद अदा किया जाएगा। रियासती सरकार ने किसी भी नई रिवायत के शुरू ना होने और ममनू जानवरों की कुर्बानी ना होने देने को यकीनी बनाने के लिए पहले ही सभी जिला पुलिस सरबराहान को एडवाइजरी जारी की हुई है। DGP राजीव कृष्ण की हिदायत के बाद त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाए जाने को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने हसास इलाकों में मार्च किया। पुलिस कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे हसास शहरों में मजीद निगरानी बरत रही है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटॉक के पलजोव स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के बावकार पुलिस कलर से सरफराज करेंगी। सिक्किम ये अवार्ड हासिल करने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शिमाल मशरक की 3री रियासत होगा। सदर की पुलिस कलर मुल्क में पुलिस फोर्स की गैर मामूली खिदमात, जबरदस्त नज्म व जब्त और कौम के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होने के एतराफ में दिया जाने वाला आला तरीन एजाज है। SSP सतह के अफसर की क्यादत में 400 सिक्किम पुलिस एहलकारों का दस्ता सदर जमहूरिया की मौजूदगी में परेड में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खसूसी पहल के तौर पर यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम सांची स्तूबा के मुकदस बाकियात को मंगोलिया भेजा जा रहा है। ये बाकियात भगवान बुद्ध के दो अहम पैरोकार सरीपुत्रा और मोद गलियाना से ताल्लुक रखते हैं। आज इन बाकियात को पूरे एजाज के साथ भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से दिल्ली भेजा जाएगा। कल ये बाकियात अवाम के लिए नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे जाएंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय फजाइया का खसूसी तैयारा उन्हें मंगोलिया लेकर जाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर جو ہاں آج نئی دلی میں خریف سے وابستہ

0: और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है
1: नमस्कार ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। त्याग और बलिदान का त्यौहार बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अवशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में रेलवे विद्युत और सड़क निर्माण से जुड़ी लगभग 30,000 करोड़ रुपए की

0: लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव से संबंधित बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में चल रहे भूमि सुधार को और विस्तार देने के लिए शहरी क्षेत्रों में भी सर्वे का काम होगा।
2: बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें अर्बन इलाके में कैसे सर्वे किया जाना है इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को भी लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी योजनाओं के लिए रैयतों से सीधे भूमि खरीदी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य सरकार के नियमित कर्मियों, पेंशनधारियों और उनके आश्रितों के इंडोर चिकित्सा के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था को मंजूरी दी है।
2: बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित, राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों, कर्मियों एवं उनके आश्रित, सेवानिवृत्त पेंशनधारी राज्य कर्मी, पति पत्नी तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति जो आयुष्मान कार्ड का संचालन भी कर रही है उसके अंतर्गत ही इसकी व्यवस्था की जाएगी और जल्दी ही इसकी व्यवस्था चालू हो जाएगी।
0: कैबिनेट ने मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल और बक्सर जिले के लिए राज्य उच्च पथ की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस पर 3,740 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पश्चिम कोसी सिंचाई योजना के पुनर्स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए 606 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही तथा अनियमितता बरतने वाले 14 अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पत्थरघट, पाटलिपुत्र, खैलाट, पैकुंठपुर, गुरारू, पालीगंज, सुपौल, गोपालपुर, गोपालगंज, एकमा, चंडी, पैरिया और साहेबपुर कमाल प्रखंडों के तत्कालीन अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इन पर आरोप पत्र गठित करने के साथ ही इनके वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई है।
3: 14 सीओ पर एक साथ वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण आरोप पत्र गठित किए गए हैं और उन पर जो है अन्य तरह के कार्रवाई भी किए गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय पर सरकार का स्पष्ट सोच है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बंद करें अन्यथा इसी तरह की और भी कार्रवाई आगे चलती रहेगी।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। जदयू प्रदेश मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी सिविल सर्जन और डीपीएम की समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को मानकों

के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले नियमित संकाय सदस्यों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। त्याग और बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में आज सुबह नमाज अदा की गई। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदन

0: समापन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में आज सुबह नमाज अदा की गई। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हुसैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2 तथा मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से आम और लीची की फसल को व्यापक क्षति हुई है। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य हिस्सों में आंधी के साथ तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
5: राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों अररिया, पूर्वी चंपारण, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, सारण, सिवान एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर, गोपालगंज, कटिहार, पूर्णिया एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: जमुई की एक अदालत ने गढ़ी थाना में पदस्थापित दारोगा प्रभात रंजन की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 3 अन्य दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। इन पर 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पटना की ATS अदालत ने जाली भारतीय नोट की तस्करी में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 3 जून को सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेले में 10,882 युवाओं को नौकरियां मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सोशल मीडिया पर उससे संबंधित पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी चुन्नू लाल यादव को जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। गया के कुरुआ बाजार में अपराधियों ने एक आभूषण व्यापारी को गोली मारकर 35 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और 5 लाख रुपए नकद लूट लिए।

0: मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवन चौक के पास एक अनियंत्रित हाईवा ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो सगे भाइयों की मौत हो गई। इधर बेगूसराय के कुरहा ढाला के पास पिकअप वाहन की चपेट में आने से भाई बहन की मौत हो गई। कटिहार जिले के टीका पट्टी थाना क्षेत्र के धूसर पंचायत के चकला पहियार में तीन दिन से आतंक फैला रहे तेंदुए को ग्रामीणों ने मार डाला। तेंदुए के हमले में तीन लोग भी घायल हो गए। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में शानदार 97 रन की पारी खेली। वैभव ने अपनी पारी में 12 छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने के क्रिस गेल के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, रैयती भूमि के लिए नई नीति, बाजार दर से 4 गुना तक मिलेगा मुआवजा। प्रभात खबर ने लिखा है, सीएम ने दिया तोहफा, राज्य कर्मियों का अब कैशलेस इलाज होगा। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, SIR कराना निर्वाचन आयोग का अधिकार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, हमारे वैभव सिक्सर किंग, आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, केवटी के पीडीओ के 6 ठिकानों पर EOU का छापा। आज अखबार ने लिखा है, नए मानक से स्कूलों में होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। त्याग और बलिदान का त्योहार बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी at 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
2: तुम नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
3: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खायब की
4: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: विज्ञान कार्यक्रम, वैज्ञानिक जानकारियों से भरपूर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति विज्ञान कार्यक्रम। हर शुक्रवार सुबह 11 सुनिए विज्ञान कार्यक्रम।
7: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11:00।
8: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
9: केंद्र है, प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

ज़फ़र हुसैन कव्वाल और साथी की आवाज़ में आप इस नात को समाप्त फरमा रहे थे। और बक़ौल अल्लामा इक़बाल की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है।

0: लोह कलम तेरे हैं, यानी अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है उसके मुनासबत से अगर हम उसके अहकाम को माने, उसके रसूल की पैरवी करें, तो यकीनन तमाम लोगों का भला होगा। सामीन, ईद उल अज़हा के मुनासबत से हम तमाम लोग इस बात से आगाह हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा जोई हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। इसमें हम देखते हैं कि अलामती तौर पे हम तमाम लोग कुर्बानी करते हैं, और ये चूँकि ज़ुलहिज का महीना भी है, इसमें अरकान हज भी अदा किया जाता है, और ये हज के दिनों में से एक है। हम तमाम लोग पे अल्लाह ताला ने कुर्बानी एक अलामती तौर पे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की सुन्नत हमें अता किया। यकीनन हम इसको जानते हैं और इसके फवायद के मुतालिक भी हम समझते हैं। ये न सिर्फ के कुर्बानी का जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है उसके ज़रिए उन तमाम चीज़ों की जानिब भी निशानदेही की है जो हुकूक इंसानी के लिए अहम और ज़रूरी तसव्वुर किए जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के इस सफ़र में गम, खुशी, रंज, राहत मामलात के साथ साथ वो तमाम चीज़ें भी आती हैं जो इंसान जिससे दिल बर्दाश्ता हो जाता है, किसी के साथ उसके मामलात होते हैं, कोई हसद का मामला होता है, कोई शर का मामला होता है, गर्ज ये कि उन तमाम बुराइयों से भी हमें आज के दिन इस अहद को करना ज़रूरी है कि हम उन तमाम चीज़ों से अपने आप को पाक साफ़ कर लें और खालिस इबादत इलाही में मशगूल हों और उसके बताए हुए रास्तों पे अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आइए सामीन, ईद उल अज़हा के ही इस मुबारक मौके पे मज़ीद गुफ्तगु हम आपको सुनवाते हैं। ईद उल अज़हा का ये जो पैगाम है और इसमें नूरुस्सलाम से मोहम्मद आलम की गुफ्तगु है जो हम आपकी समातों के हवाले कर रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं।
1: सामीन आदाब, ईद उल अज़हा का पैगाम इस मुनासबत से आज हमारे यहाँ मदु है मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर मौलाना नूरुस्सलाम नदवी साहब, उनसे हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे और उनसे मुखातब हैं खाकसार मोहम्मद आलम कासमी। तो सबसे पहले हम अपने मेहमान गिरामी का स्टूडियो में इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी दुनिया में कुर्बानी की जाती है और कुर्बानी में बहुत सारे जानवर पेश किए जाते हैं, तो कुर्बानी का असल मकसद क्या है और कुर्बानी क्यों की जाती है, आप इस पर रोशनी डाल दें।
2: कुर्बानी का मकसद अल्लाह ताला का तकर्रुब और उसकी खुशनुदी हासिल करना है। ईद उल अज़हा के दिन पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होते हैं और जानवरों की कुर्बानी पेश करके इस बात का सबूत पेश करते हैं कि मेरा जीना और मरना, खाना और पीना सब अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए है। कुर्बानी का हकीकी मकसद यही है कि अल्लाह की मोहब्बत में इंसान अपनी कीमती से कीमती चीज़ को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, वही ईमानी जज्बा और कैफियत हमारे अंदर भी पैदा हो जाए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर था। कुर्बानी का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसको अगर मुआशरती नुक्ते नज़र से देखें तो इस पर अमल करने से गुरबा और मसाकीन को गोश्त फराहम होता है, उसे अच्छी ग़िज़ा मिलती है, इसमें भी उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कुर्बानी में तमाम चीज़ों को कुर्बानी करने वाले अपने ही मसरफ

0: जैसे हर जानवर के अंदर एक हिस्सा उनका मुतय्यन है तो एक हिस्सा उनको मिल जाता है जो आम दिनों के अंदर मुमकिन नहीं। फिर उसके खाल और जैसे वगैरह की जो रकम होती है उसकी भी कीमत पूरे के पूरे तौर पर गरीबों ही में तकसीम की जाती है। इसके अलावा जानवर का चारा, ये जो गरीब बेचते हैं तो उनको फ़ायदा होता है, और उसको परवरिश करना, पालने पोसने की जिम्मेदारी भी उनको रहती है। तो कुल मिलाकर के ये समझा जाता है कि इसके जरिए से मालदारों की रकम इस उन्वान से गरीबों तक कई शक्ल में पहुंचती है और गरीबों का कई शक्ल में फायदा होता है। तो इसके जरिए से जो इस्लाम ने कुर्बानी का जो मकसद है कुर्बान की मदद करना, तो दूसरे जराए से इसका सारा का सारा फायदा गरीब और मोहताजों तक ही पहुंचता है। अब रही बात ये कि ये कहा जाता है कि कुर्बानी का जानवर है और खास लोग इसको कुर्बानी करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये कुर्बानी ये आज से नहीं है बल्कि किताबों के अंदर आया है, कुरान करीम में भी आया है कि दुनिया में जितनी भी कौमें, हर कौम के यहाँ कुर्बानी किसी न किसी शक्ल में रही है। नाम कहीं बलिदान है, कहीं भेंट है, लेकिन ये शक्ल बदलती रहती है, लेकिन सबके यहाँ कुछ ना कुछ ये इस जज्बे से और इस उन्वान से ये रही है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुर्बानी की और क्या क्या शक्लें और कौमों के यहाँ कैसे राज रही, आप इस पे कुछ रोशनी डाल दें।
1: देखिए, कुर्बानी की तारीख बहुत पुरानी और कदीम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबील और काबिल की कुर्बानी का जिक्र तौरात और इंजील के अलावा कुरान पाक के अंदर मौजूद है।
0: पहले इंसान से
1: जी,
0: जो पहले इंसान आदम है उन्हीं की औलाद से डायरेक्ट जो है इसका आगाज हो रहा है।
1: जी जी जी जी, जी। और अभी आपने कहा कि कुर्बानी का वजूद किसी न किसी शक्ल में हर नबी और रसूल के ज़माने में मिलता है
0: जी, हर कौमों के यहाँ में,
1: और शायद ही कोई ऐसी कौम हो जहाँ इसका रिवाज किसी शक्ल सूरत में मौजूद न हो। जानवर को ज़बह करके किसी ऊंची जगह पर या पहाड़ पर रख दिया जाता था ज़माने कदीम में, और आसमान से आग आती थी और उस कुर्बानी को जलाकर खाकिस्तर कर देती थी। ये इस बात की अलामत समझी जाती थी कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, और हाबील और काबिल ने जो कुर्बानी दी थी वो कुछ इसी अंदाज की कुर्बानी थी। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया और काबिल की कुर्बानी को कबूल नहीं किया। अरब ममालिक में लोग जो कुर्बानी देते थे उसका तरीका ये होता था कि लोग कुर्बानी के जानवर को बैतुल्लाह के सामने लाकर रख देते थे और उसका खून जो है उसकी दीवार पर पोत देते थे, लगा देते थे।
0: ये इस्लाम से पहले का
1: जी, इस्लाम से पहले का वाकया है। लेकिन जब इस्लाम आया तो बताया कि कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है बल्कि इसका तकवा पहुंचता है। वह कि कुर्बानी का जो गोश्त और खून वहां ला के रख देते थे, कुरान करीम ने इस बात की नफी की कि भाई इससे आपका कुर्बानी का असल मकसद जो है वो हासिल नहीं होता है, इसलिए कि कुर्बानी नाम है तकवे का और दिल के जज्बे का। इस्लाम में कुर्बानी की बुनियाद हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े से होती है, जो बहुत मशहूर और मकबूल वाक़या है, और हर मुसलमान इस वाक़े को जानता है और बकरीद के मौके पर इस वाक़े को बयान भी किया जाता है। एक हदीस में आया कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल भी किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी क्या है, माज़ाही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे जद्द अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उसकी याद में ये कुर्बानी की जाती है। जब इस्लाम आया और पुराने ज़माने में जो कुर्बानी की शक्ल थी और उसके अंदर जो गलत रस्म व रिवाज थे, तो इस्लाम ने उस गलत रस्म व रिवाज को दूर किया और जो सही थे उसको बाकी रखा, और इस्लाम ने बतलाया कि कुर्बानी महज अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए की जाए। और कुर्बानी के इस मकसद से ये होता है कि इंसान के अंदर जो है वो हमदर्दी का और खैरखाही का जज्बा भी पैदा होता है।
0: बिल्कुल, आपने जो अभी रोशनी डाली है बिल्कुल ये दुरुस्त है कि अभी जो मौजूदा कुर्बानी है और इस्लाम में जो अभी कुर्बानी का जो रिवाज है और जो दस्तूर चला रहा है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके जो बेटे हज़रत इस्माइल थे उन्हीं से इसका आगाज़ हुआ है, और

0: तो उस वाकया का पस मंजर यही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में एक लौती औलाद हुई, उसको वो बहुत चाहते थे, तो अल्लाह ने इम्तिहान के तौर पर उन्हें आजमाया कि हमसे ज़्यादा मोहब्बत है कि औलाद से ज़्यादा मोहब्बत है। तो उनको ख्वाब में जब दिखलाया तो उनके बेटे और वो दोनों तैयार हो गए कि अल्लाह के हुक्म पर हम हर कुछ निछावर करने को तैयार हैं। तो ये अदा अल्लाह को पसंद आई और उसी को यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इसी वाक़या को आज तक अल्लाह ने राइज फरमा दिया है, जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जारी फरमाया कि हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो आज तक जारी है और क़यामत तक ये जारी रहेगा। तो ये आगाज़ ये बहुत कदीम है। इसी तरह से जब हम देखते हैं तो ये बाप ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि तुम्हारा जज्बा क्या है। उन्हें ये चीज नहीं, सामान नहीं चाहिए, उन्हें गोश्त नहीं चाहिए, बल्कि वो तो तकवा और जज्बे को देखना चाहता है। हर इंसान के अंदर जब तक ईसार का, कुर्बानी का जज्बा नहीं रहेगा, दुनिया का कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। एक शख्स के अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं है, अपने आराम को कुर्बानी, सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक नहीं है, मिजाज की कुर्बानी, नफ्स की कुर्बानी, शौक की कुर्बानी और ये हमारी महबूब ख्वाहिशात है जो हम चाहते हैं उसको निछावर करने की कुर्बानी, जब ये हर तरह की कुर्बानी किसी इंसान के अंदर जमा होती है तभी जाके उसको बड़ा मकाम मिलता है। अगर कोई शख्स सिर्फ आराम करता रहे और अपने आराम को कुर्बानी करे तो कोई बड़े मकासद को हासिल नहीं कर सकता। अगर एक माँ बाप अपने ख्वाहिशात को, अपने आराम को कुर्बान नहीं करे तो कभी भी अपने औलाद की सही तरबियत तो परवरिश नहीं कर सकते हैं। तो माँ बाप के अंदर अपने ख्वाहिशात को, जज्बात को निछावर करने का जज्बा होता है जिस वालदैन के अंदर, उन्हीं के बच्चे कामयाब होते हैं। इसी तरह से एक इंसान के अंदर अपने मुल्क के लिए मर मिटने का जब तक जज्बा नहीं होगा वो मुल्क की खिदमत नहीं कर सकता है। तो ये जज्बा सिर्फ कुर्बानी के जानवर तक मुनहसिर नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी एक ऐसा जज्बा है कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स, आराम, मिजाज और सबको जब तक निछावर करने का जज्बा नहीं होगा वह समाज के लिए मुफीद नहीं हो सकता है। तो ये कुर्बानी का जज्बा जानवर से आगे बढ़ करके इन तमाम चीजों को अपने अंदर समोए हुआ। तो आप मजीद इस पे आप कुछ रोशनी डाल दें कि और हमें किस तरह की के जज्बात को अपने अंदर परवान चढ़ाना चाहिए ताकि कुर्बानी का जो आम मकसूद है और आम जज्बा जो है वो हमारे अंदर बेदार हो।
1: बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने इस पर अभी रोशनी डाली। देखिए, कुर्बानी एक ऐसा अमल है जिसका कोई बदल नहीं है और कुर्बानी की रूह इखलास, लिलाहियत और तकवा है। इसके ज़रिए इंसानी ज़िंदगी में ईसार और कुर्बानी का जज्बा बेदार होता है।
0: बेशक।
1: और ये ऐसा जज्बा है जिसके ज़रिए एक दूसरे के तईं ताउन, हमदर्दी, खैरखाही का जज्बा पैदा होता है। इंसानी समाजी और इज्तिमाई ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए मदद करने और ताउन करने का भी जज्बा इससे पैदा होता है। दूसरों की जरूरतों और तकलीफों को समझना, उसको दूर करने की कोशिश करना और ये सब
0: का अपने मिजाज का बन जाता है कि सिर्फ अपना फायदा देखता है, सेल्फिश हो जाता है, वो समाज के लिए मुफीद नहीं होता।
1: बिल्कुल सही फरमाया। तो इसमें इस मकसद को भी ध्यान में रखा गया है कि इससे समाजी और इज्तिमाई जिंदगी में एक ऐसा मिजाज तश्कील पाए जिससे समाज का फायदा हो, इंसानियत का फायदा हो और तमाम लोगों का फायदा हो। देखिए, हर चीज का मकसद अल्लाह की रजा को रखा गया। अगर इसमें अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी नहीं है तो फिर ये सब बेकार है। कुर्बानी हमें ये भी पैगाम देता है कि हर काम हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा ही के लिए करना चाहिए, इसलिए कि हमको जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की तौफीक से मिला है,
0: उसी का दिया हुआ है।
1: आज अगर हम अपने माल की कुर्बानी कर रहे हैं या जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं या किसी भी शक्ल में कुछ कर रहे हैं तो ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, ये उसी की नेमत से है। इसलिए उसका जब जैसा हुक्म होगा हम उसी एतबार से अल्लाह की राह में जान माल हर चीज खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे। ये कुर्बानी का असल मकसद है और यही कुर्बानी का पैगाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर जो ईमानी जज्बा था और قوم اور انسانیت کی خدمت کی ترقی کا جو جذبہ تھا، وہی جذبہ آج بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے

0: गुलसिता पैदा। तो सच्ची बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस जज्बे के साथ, शौक और लगन के साथ अल्लाह की रजा खुशनुदी के लिए कुर्बानी दिया था, अगर उसी जज्बे को हम पैदा कर लें तो जो हालात देख रहे हैं तो उसमें हमको मजबूती मिलेगी और हम बड़ा से बड़ा काम करने की पोजीशन में आएंगे। शर्त यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान, उनके जैसा ईमान, शौक और जज्बा हमारे अंदर पैदा हो।
1: ये आपने जो फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जज्बा जो बुलंद था, उसी बुलंद जज्बे को अल्लाह ताला ने जारी कर दिया और क़यामत तक वो जारी है, और उसी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम के अंदर भी उनकी कुछ चीज़ों को बाकी रखा है, उसी में से एक कुर्बानी भी है। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा नमूना है कि उन्होंने हक के खातिर, सच के खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी। जालिम बादशाह नमरूद ने उन्हें मुल्क से निकाल दिया, लेकिन वो हक पर डटे रहे, उन्हें आग में जलाने की कोशिश की। जालिम बादशाह वो चाहता था कि हम इनकी जबान को रोक दें, हक से इनको रोक दें, लेकिन वो उस पर जमे रहे। और फिर ये एक मुअज्जज़ा के तौर पर है कि उनके लिए आग गुलजार बन गई और उनसे भी वो अल्लाह ताला ने उन्हें बहिफाजत निकाला। फिर इसी तरह से वो इम्तहान में इसमें भी कामयाब हुए कि हक के खातिर अपने मुल्क से निकाले गए, और जो मक्का की जो सरजमीन है वो बिल्कुल गैर आबाद हो गई थी, वहाँ पे कोई इंसान पहले नहीं था,
0: कोई आबादी नहीं थी।
1: वहाँ पे हज़रत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल को वहाँ छोड़ के चले आए। अल्लाह का हुक्म था कि इन्हीं दो के ज़रिया से शहर को आबाद किया जाएगा। तो आज जो सारी दुनिया का मरकज़ बना हुआ है, ये उन्हीं माँ बेटे की वजह से और उनकी कुर्बानी से कि वहाँ सिर्फ अल्लाह के भरोसे रहे। वहाँ न पानी था, न खाने का कोई सामान था, फिर उनके बाद अल्लाह ने वहाँ पे पानी का चश्मा जारी किया, और फिर उसके बाद फिर आबादी बढ़ती चली गई। तो कोशिश किया तो वो ऐसी जगह जहाँ पे कोई न इंसान था, न इंसानियत के लिए कोई वसाइल थे, वे आबो गया वादी थी, चटियल मैदान था, वहाँ पे हिम्मत करके रहे। तो फिर अल्लाह ने उनके लिए सारे रास्ते आसान किए। तो इंसान जब कुर्बानी देता है और इंसान कुछ करने का जज्बा रखता है तो फिर उसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती है, लेकिन शुरू में इंसान को अपने मिजाज, अपने नफ्स और अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करके अपने मिशन और मकसद के तहत आगे बढ़ना पड़ता है। तो फिर उसके असरात और समरात जाहिर होते हैं, जो पैगाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो आखिर में आपसे हम जानना चाहेंगे कि इन तमाम पस मंजर में आप हमें बताएं कि उमूमी तौर पर आम इंसानों के लिए ईद उल अज़हा से या कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है, वो पैगाम हमारे सामने पेश कर दें कि इससे हमारे सामीन को कुछ पैगाम मिले।
0: कुर्बानी का पैगाम यह है कि इसके जरिए से इंसान के अंदर ये इस्तेहज़ार पैदा होना चाहिए, कुर्बानी करने वाले के अंदर इस बात का जज्बा पैदा होना चाहिए कि हम महज जानवरों की कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम अपने नफ्स की कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी कर रहे हैं, हम अपनी तमन्नाओं की कुर्बानी कर रहे हैं, हम अपनी मिजाज और मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि हम उसूल पसंद ज़िंदगी गुजारेंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल दिया है, जो हिदायत दी है, जो तालीमात दी हैं, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो कुर्बानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इंसान सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं बल्कि अपने नफ्स की कुर्बानी कर रहा है।
1: बेशक आपने सही फरमाया कि कुर्बानी का असल मकसद यही है, और इस मकसद को हमें पेश नज़र रहना चाहिए कि कुर्बानी इसलिए नहीं करें कि हम अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं या हम अपनी ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, बल्कि इस मौके के अंदर जो जज्बा है कि हमारे अंदर ईसार का जज्बा हो, निछावर होने का जज्बा हो, अपने शौक़ को, मिजाज को बड़े मकसद के लिए कुर्बान करने का जज्बा हो। एक तालिब इल्म जब तक अपने शौक़ को, अपने आराम को कुर्बान नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, उसको बड़ी मंजिल और बड़ा मकाम नहीं मिल सकता है। तो ये मिजाज कुर्बानी बनाता है, और इसी के साथ साथ ये भी पैगाम देता है कि इस मौके पर हम गरीबों, मोहताजों को का भी ख्याल रखें, और उसमें बाबता तीन हिस्सा में एक हिस्सा गरीबों का मुतय किया गया है, एक हिस्सा दोस्त

0: अहबाब का है, एक अपने लिए है। और इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि अपनी कुर्बानी में हमारे किसी अमल से किसी भी इंसान को कोई तकलीफ ना पहुंचे, कि हम अपनी इबादत में किसी के तकलीफ का जरिया बने। इसलिए सफाई सुथराई और अपने दोस्त अहबाब सबका ख्याल रखें और गरीबों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। कुर्बानी का यही सादा सा पैगाम है। आदमियत और मोहब्बत ईद का पैगाम है, आदमियत और मोहब्बत ईद का पैगाम है, नफ्स की कुर्बानी का ईद अजहा नाम है। तो इसी के साथ साथ आज की गुफ्तगू को हम यहाँ इख्तिताम पज़ीर करना चाहते हैं। आज के इस अहम तरीन गुफ्तगू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद थे जनाब डॉक्टर मौलाना नूरुस्सलाम नदवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए।
1: आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दावत दी।
0: तो इसी के साथ आज के ये मजलिस यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। हमारे मेहमान खुसूसी थे जनाब डॉक्टर नूरुस्सलाम नदवी साहब और उनसे मुखातब थे ये हकीर खाकसार मोहम्मद आलम कासमी। शुक्रिया।
2: सामीन, इज़हार क़ुरबानी की अहमियत और मानवियत के मौजू पर नूरुस्सलाम से मोहम्मद आलम की गुफ्तगू आप समाप्त कर रहे थे। आइए अब अगली पेशकश में मुलाहिज़ा फरमाइए मोहम्मद सदर आलम से उनके नातिया कलाम।
3: अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम, नानो इबादो मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। नात पाक पेश खिदमत है, समाअत फरमाएं।

एक दूसरी नात पाक पेश खिदमत है, समाअत फरमाए। दिल में याद मदीना बसी है

जश्न क्यों ना मनाए हम उनका, जश्न क्यों ना मनाए हम उनका, जिनके सदके में दुनिया बनी है, जिनके सदके में दुनिया बनी है। मांग लो जिस कदर मांग पाओ, मांग लो जिस कदर मांग पाओ, हर जगह उनकी जलवा गरी है, हर जगह उनकी जलवा गरी है। हादसाते जमाना का क्या गमे, हादसाते जमाना का क्या गमे, दिल में उल्फत नबी की बसी है,

अपना ईमान बचा सदर आलम अपना ईमान बचा सदर आलम रहजनों से ये दुनिया भरी है रहजनों से ये दुनिया भरी है।

0: रहजनों से ये दुनिया भरी है।
1: सामिन, आप मोहम्मद सदर आलम से उनके नातिया कलाम समाप्त फरमा रहे थे और अगली पेशकश में लीजिए मुलायजा फरमाइए जमील मेहंदी और साथियों की आवाज़ में ये नार।

जमील मेहंदी और साथियों की आवाज़ में सामीन आप इस नात को समात फरमा रहे थे, और इसी के साथ हमारा सफ़र यहीं तमाम हुआ। ईद उल अज़हा की एक बार फिर से पुरखलूस मुबारकबाद आप तमाम को कबूल फरमाएं। हमारा सफ़र यहीं तमाम करने की इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।

गीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए इस युगल गीत से।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। समय हो चला है फिल्म

सच में हमारी आपकी ये जिंदगी भी एक सफर ही तो है, और इस सफर में हमें चलते जाना है तब तक जब तक कि हम मंजिल तक ना पहुंच जाए। एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को, सबसे पहले आपके इस रेडियो हम सफर की ओर से ईद उल अजहा की हार्दिक बधाइयां। श्रोताओं, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए हमेशा ही सच और ईमान की राह पर चलने की सीख दी है। ऐसी कोई भी परीक्षा जो ऐसा लगता है कि हमारे लिए मुश्किल है, वो भी आसान हो जाती है जब उस रब की मर्जी और उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। कहते हैं कुर्बानी, कुर्बानी हमें देनी है अपनी बुरी आदतों की, अपने अंदर की उन बुराइयों की जो हमें ईश्वर तक पहुंचने में बाधक बनाता है, रुकावटें पैदा करता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने जिंदगी की उन तमाम बुराइयों की हम कुर्बानी दे दें, उन्हें अपने से दूर कर दें, फिर वे हमारी जिंदगी में दोबारा ना आ सके। प्यार भरे फिल्मी गीतों के इस सुहाने सफर में आप हैं हमारे साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। अपनापन फिल्म का वो गाना हम आपको सुनवा रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। आइए ना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनवाते हैं आपको मन्ना डे का गाया हुआ ये गीत फिल्म जंजीर से।

जंजीर फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे थे मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ। फिल्म संगीत के इस सुहाने सफर में आप हैं हमारे साथ। सूचना शिक्षा मनोरंजन एक साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। लीजिए दोस्तों, प्यार भरे फिल्मी गीतों के सुहाने सफर को आगे बढ़ाते हैं, सुनवाते हैं आपको किशोर कुमार का गाया ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला।

प्यार भरे फिल्मी गीतों के इस सुहाने सफर में आप हैं हमारे साथ। किशोर कुमार को आप सुन रहे थे, ये फिल्म थी अब्दुल्ला। सच में दोस्तों, थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी दौलत आ जाने के बाद हम ये सोचते हैं कि सारी दुनिया तो बस हमारे मुट्ठी में है। लेकिन ये धन, ये दौलत, ये ताकत, ये यौवन सब यहीं रह जाता है। एक नेकी, ईमान से बिताई हुई जिंदगी और उस रब के लिए समर्पण, यही वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को सफल बनाती है। तो दोस्तों, कुर्बानी केवल जानवरों की नहीं, अपनी बुरी आदतों की भी होनी चाहिए, और वो हम करते भी हैं। त्योहार हमारी जिंदगी में हमेशा एक अच्छी सीख लेकर आते हैं, बुराइयों से हमें बचाते हैं, नेकी की राह पर चलना सिखाते हैं। एक बार फिर आपके साथ है आपका ये रेडियो हमसफर संजीव कुमार सुधाकर। आइए ना, प्यार भरे फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं और भी प्यारे प्यारे फिल्मी गाने। हेमलता का गाया ये गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है आंखियों के झरोखे से।

लीजिए श्रोताओं, इस कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीत रचना सावन कुमार की है, संगीत महेश किशोर का और फिल्म का नाम है

सच ही कहा है दोस्तों कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। उमराव जान फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे थे, आशा भोसले का गाया हुआ। प्यार भरे फिल्म गीतों का ये सुहाना सफर जारी है दोस्तों। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। अपने सुनने वालों को हम बता दें, आज की हमारी इस पहली सभा में दोपहर 1:15 पर एक बार फिर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। लीजिए इस कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं एक बार फिर आशा भोसले, साथ हैं अमिताभ बच्चन, फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर।

0: Amore mio, dove sai tu? ए, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: आ, आ, आ, ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

दिन भर आपकी ताजगी बनी रहे, यह हमारी कोशिश होती है फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक वैसे बेहतरीन गीत हम पहुंचा सके, जो आपके काम में भी सहायक हो, जो आपके काम में बाधक ना हो और आपके काम के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है ना वो आपके शरीर में बनी रहे। यही तो हमारी कोशिश होती है फिल्म संगीत के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक और भी ज्यादा बेहतर चीजों को पहुंचाने की। सूचना शिक्षा मनोरंजन का एकमात्र साधन आकाशवाणी दरभंगा, जहां आप सुनते हैं फिल्मी गाने, सूचना और जीवन को जो बातें बेहतर करती है ना वो जरूरी बातें भी हम आप तक पहुंचाते हैं। चाहे बात हो खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई, चाहे बात हो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे बात हो जिंदगी को बेहतर करने की या फिर मनोरंजन की, हम हमेशा आपके साथ होते हैं। प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये सुहाना सफर जारी है दोस्तों।

मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे। ये फिल्म थी कर्ज। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारे ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों से लिए गीत हमने आपको सुनवाए, वे फिल्में थी अपनापन, जंजीर, अब्दुल्ला, आंखियों के झरोके से, सनम बेवफा, उमराव जान, द ग्रेट गैम्बलर और कर्ज। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मन्ना डे, किशोर कुमार, हेमलता और साथी। अपने सुनने वालों को हम बता दें, एक बार फिर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारी आज के इस पहली सभा में दोपहर 1:15 पर। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत आपको सुनवाते हैं भीमसेन जोशी जी का गाया हुआ तुम बिन कौन खबरिया ले।

अभी आप उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत भीमसेन जोशी जी का गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दरभंगा है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।

0: सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध, जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
2: जनकपुर जाने के लिए आए,
1: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
2: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
1: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
3: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
1: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
5: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद।

0: श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की, और जाना था इसकी रोचक बातों को
0: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
0: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
0: जी चलिए श्रोताओं, अब इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
1: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
0: जी,
1: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
0: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
0: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
1: जी,
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
7: माँ, माँ।
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ,

0: माँ बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
1: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
1: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
0: अरे योगेंद्र,
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
0: हाँ माँ,
3: और माँ इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
3: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
4: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
5: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
4: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
5: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
4: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
5: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
4: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1,000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
5: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
6: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
7: जी साहब, जी साहब।

0: जी साहब।
1: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
2: चलो साथियों।
3: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी, यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव

0: को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
1: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
0: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।

0: उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए नए जमाने के नए तराने। पहला गाना हमने लिया है फिल्म सन ऑफ सरदार 2 से, आवाज है विशाल मिश्रा की, संगीत और बोल लिखे हैं जानी ने।

नए जमाने के नए तराने, आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए फिल्म श्रीकांत में उदित नारायण की आवाज, आनंद मिलिंद और आदित्य देव का संगीत।

नए जमाने के नए तराने, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। सुनिए अरिजीत सिंह को फिल्म लापता लेडीज में। बोल लिखे हैं प्रशांत पांडे ने और संगीत दिया है राम संपत ने।

नए जमाने के नए तराने, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। अगला गाना सुनवा रहे हैं रोमियो और अनुराग साकिया की आवाज में। संगीत है अनुराग साकिया का और बोल लिखे हैं शकील आजमी ने। फिल्म है भीड़।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए, वरुण जैन, रोमियो और अनुराग साकिया की आवाज में, संगीत अनुराग साकिया का और बोल है कौसर मुनीर के, फिल्म द डिप्लोमेट।

नए जमाने के नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। अगला गाना सुनिए परंपरा टंडन की आवाज में, मनन भारद्वाज का संगीत और उन्हीं के लिखे बोल हैं। फिल्म है यारियां टू।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं नए जमाने के नए तराने। आइए सुनते हैं दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी संग का गाना। आवाज है अरुण देव यादव की, अनुराग साकिया का संगीत है और जूनो के लिखे बोल हैं।

नए जमाने के नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। अगला गाना हमने लिया है फिल्म गदर 2 से। आवाज है उदित नारायण, आदित्य नारायण और मिथुन की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है मिथुन ने।

नए जमाने के नए तराने का यह अंक यहीं तक, दीजिए इजाजत। आकाशवाणी दरभंगा से भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। लीजिए प्रस्तुत है महिला श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार बहनों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्वेता और एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं कार्यक्रम नारी संसार लेकर। बहनों, जैसा कि आप जानती हैं, आज गुरुवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, जहां आनंद लेंगे कुछ नए पुराने फिल्मी गीतों का और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। बहनों, आज त्याग, आस्था, प्रेम और भाईचारे का त्यौहार बकरीद पूरे देश में मनाया जा रहा है। बकरीद मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन लोग सुबह ईदगाह और मस्जिदों में जाकर विशेष नमाज अदा करते हैं और देश दुनिया में अमन और खुशहाली की दुआ मांगते हैं। यह पर्व हमें हजरत इब्राहिम की कुर्बानी और ईश्वर के प्रति उनकी अटूट आस्था की याद दिलाता है। इसी कारण इस दिन कुर्बानी की परंपरा का निर्वाह किया जाता है और जरूरतमंदों को चीजें बांटकर इंसानियत और बराबरी का संदेश दिया जाता है। बकरीद केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि समाज में प्रेम और सहयोग की भावना को मजबूत करने का अवसर भी है। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों से मिलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, साथ ही अपनी अपनी खुशियां भी साझा करते हैं। हम सभी को भी इस पर्व से ये सीख लेनी चाहिए कि जरूरतमंदों की सहायता करना और सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहना ही सच्ची इंसानियत है। बहनों, त्यौहार कोई भी हो, उसकी असली खूबसूरती आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे में होती है। तो आइए हम सभी मिलकर बकरीद के त्यौहार के उपलक्ष्य में प्रेम और एकता का संदेश फैलाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ

0: बाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मुर्गे।

कर गया वो कैसे बाजार में ऐसे, शरीफों को हम रुस्वा नहीं करते मियां जुम्मन, तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय मेरी जान का दुश्मन, हाय।

बहनो, अभी आप सुन रही थी अमर अकबर एंथनी का ये गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता। विषय है योग के फायदे और वार्ता मेरी खुद की बनाई हुई है, तो आइए साझा करते हैं योग के फायदे की महिलाओं के स्वास्थ्य में योग करने से क्या क्या

फायदे मिलते हैं। आज हम बात करेंगे योग से होने वाले फायदे के बारे में, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर योग है क्या। योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है और इसके लिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना जरूरी है। ये हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ है एकता या बांधना। इस शब्द की जड़ है संस्कृत के शब्द युज, जिसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इस जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल को बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी है। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी को, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक व्यवहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां और नसें सद्भाव में काम नहीं कर पाती, बल्कि वो एक दूसरे के विरोध में कार्य करती हैं। बाहरी शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी के बाद योग मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर काम करता है। रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत तो नहीं, लेकिन इसके मुकाबला ये करने को हमेशा तत्पर होता है। योग करने के कई फायदे होते हैं। इससे शरीर मजबूत होता है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। योग के कुछ नियम और तरीके होते हैं। ऐसे में अगर योग हम शुरू करना चाहते हैं तो इनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। योग की शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी और आज भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग योग का सहारा लेते हैं। योग करने से मन, शरीर और आत्मा संतुलित होता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने योग के चमत्कार को माना है। रोजाना योग करने से चिंता, तनाव और अवसाद दूर होता है, यानी योग मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर आप अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ऐसा करना आप पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में आप योग को अपनाकर कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। योग को अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसे प्राणायाम योग भी कहते हैं। ये एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है जिससे शरीर, मन और आत्मा संयुक्त होते हैं। शरीर के साथ योग हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। कई बार लापरवाही के कारण छोटी सी समस्या गंभीर रूप ले लेती है। योग से न सिर्फ आप शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत रहते हैं। योग अस्थमा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, गठिया, पाचन विकार और अन्य कई बीमारियों से राहत दिलाने का काम करता है। योग कई तरह की बुरी आदतों के प्रभाव को भी कम करता है, जैसे कि कम फिजिकल एक्टिविटी, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल, खान पान में गड़बड़ी। अगर हम जाने तो इसके बेहतर परिणाम के लिए हमें हमेशा योग करनी चाहिए, यानी कि अगर हम योग की शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 30 दिनों तक लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। योग अभ्यास को पूरा करने के लिए और इसका पूरा लाभ पाने के लिए कुछ सरल नियमों का पालन करने की जरूरत होती है, जैसे कि आप योग शुरू करने से पहले एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लें, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय योग को करें, योग करने से पहले स्नान जरूर करें, योग शुरू करने से 2 घंटे पहले तक कुछ भी न खाएं, खाली पेट ही योग करना चाहिए, योग करने के 30 मिनट के बाद तक यानी कि आधे घंटे के बाद तक कुछ भी न खाएं, आरामदायक कपड़े पहने, शांत वातावरण में योग का अभ्यास करें, उस वक्त मन को भी शांत रखें, खुद के साथ किसी भी तरीके की जबरदस्ती ना करें। कहने का तात्पर्य है कि जबरदस्ती किसी भी प्रकार के योग अभ्यास को ना करें। यदि आपको पहले से किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या हो तो योग शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, और अगर योग करने के दरमियान किसी भी प्रकार की परेशानी आती हो तो योग अभ्यास को रोक दें। अंत में शवासन करें। ये थे कुछ योग से होने वाले फायदे, और योग को नियमित तौर पर अगर अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो बहुत सारे असाध्य रोगों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। बहनों, आज के दिन यानी कि

28 मई को महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान दिवस के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि स्वस्थ नारी खुशहाल परिवार की पहचान होती है, लेकिन अक्सर महिलाएं अपने परिवार का ध्यान रखते रखते अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। बहनों, महिलाएं घर परिवार बच्चों और समाज की जिम्मेदारियों को बड़ी मेहनत और समर्पण के साथ निभाती हैं, लेकिन जब बात खुद के स्वास्थ्य की आती है तो अक्सर यही जवाब होता है कि अभी समय कहाँ है। यही लापरवाही समय के साथ आगे चलकर शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया, कमजोरी, तनाव, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। बहनों, हम महिलाओं में सबसे आम सी समस्या है एनीमिया यानी कि खून की कमी। इसे बचने के लिए अपने भोजन में हरी सब्जियों, चुकंदर, दाल, गुड़, चना, मौसमी फल को जरूर शामिल करें। इसके साथ ही भरपूर मात्रा में पानी भी जरूर पिए। एनीमिया को कभी भी सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर लगातार कमजोरी लगे या फिर चक्कर आए या शरीर में दर्द रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हमेशा ध्यान रखें कि स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। घर और काम की जिम्मेदारियों के बीच तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन लगातार चिंता और उदासी नुकसान पहुंचा सकती है। अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालिए, मनपसंद काम कीजिए, योग कीजिए, अच्छी नींद लीजिए और खुलकर अपनी बात साझा कीजिए। महिलाओं को समय समय पर कुछ स्वास्थ्य से संबंधित जांच भी जरूर करवानी चाहिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन की जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्तन की जांच और स्वास्थ्य संबंधित अन्य जांच, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच। इसके साथ ही बहनों, गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित भोजन और समय पर टीकाकरण भी बहुत आवश्यक है। कई बार देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई महिलाएं अपनी बीमारी को छिपा लेती हैं या इलाज में देर करती हैं, डॉक्टर को पूरी बीमारी नहीं बताती। तो बहनों, हमेशा याद रखिए कि समय पर जांच और इलाज स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं के लिए कई सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध हैं, इसलिए किसी भी परेशानी को नजरअंदाज ना करें। बहनों, आप परिवार की ताकत है। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार और समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो चलिए अपने रोजमर्रा के जीवन में भोजन, आराम, मानसिक शांति और नियमित स्वास्थ्य जांच को महत्व दीजिए, क्योंकि आपकी सेहत सबसे कीमती है। तो चलिए इसी के साथ सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

बहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। आज हम बनाएंगे इसमें कुछ मीठा। कहते हैं ना, त्योहारों की मिठास अगर खाने में घुल जाए तो खुशी और भी बढ़ जाती है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वादिष्ट और बेहद आसान सी मीठी सेवई बनाने की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की खास रसोई। इसके लिए हमें चाहिए सामग्री, उसे आप कृपया लिख लें। मीठी सेवई बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सेवई, 1 लीटर दूध, 1/2 कप चीनी, 2 चम्मच घी, थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश बारीक कटे हुए, 2 से 3 छोटी हरी इलायची पीसी हुई, बारीक पीसी हुई, थोड़ा सा केसर, वो ज़रूरी नहीं, अगर आपके घर में है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, वरना आप इसे छोड़ भी सकती हैं। बहनों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर आप कढ़ाई रखें और उसमें थोड़ा सा घी डालें। घी जब थोड़ा गर्म हो जाए तब इसमें सिवई डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इसके बाद एक बर्तन में दूध डालकर उबाल लें। जब दूध में अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो उसमें भुनी हुई सिवई को डाल दें। फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे हुए मेवे डालकर धीमी आंच पर कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकाएं। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप सिवई को पकाएं तो लगातार उसे चलाती रहें। जब सिवई पक जाए अच्छी तरीके से तो आप ये देख लें कि दूध गाढ़ा हुआ है कि नहीं। तो दूध अगर गाढ़ा हो जाता है तब आप गैस को बंद कर दें। तो लीजिए बहनों, तैयार है स्वादिष्ट खुशबूदार मीठी सिवई। इसे परोसते समय आप ऊपर से बादाम काजू डालकर इसे गर्म या ठंडा दोनों तरीके से परोस सकती हैं। किसी किसी को गर्म सिवई पसंद होती है तो घर में किन्हीं को ठंडी सिवई भी पसंद होती है। तो इसके लिए जब सिवई ठंडी हो जाए तो आप इसे कुछ देर के लिए फ्रीज में उठाकर रख दें। लेकिन जब भी फ्रीज में रखें तो ध्यान रखें कि आप बर्तन को जरूर से ढक दें, वरना उसमें बर्फ जम जाए।

या फिर कुछ उसमें पतलापन आ जाता है दूध में अगर बिना ढके रखते हैं, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। मैंने कोई भी त्यौहार क्यों ना हो, खुशी अपने परिवार और अपने लोगों के साथ ही आती है, और जब उसमें कोई मीठा पकवान हो, मीठी बात हो, खुशियां और भी बढ़ जाती हैं। तो आज के त्यौहार के उपलक्ष्य में आप सिवैयां बनाएं या फिर कोई भी मिठाई बनाएं तो खुद भी खाएं, अपने पड़ोसियों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, सभी के साथ बैठ करके खाएं। आप देखेंगी कि आपकी खुशियां आपके त्यौहार में चार चांद लग गया है। मैनो आप भी चाहें तो अपनी व्यंजन रेसिपीज, अपने सुझाव, कार्यक्रम संबंधी सुझाव हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। आप अपने संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो चलिए बहनों, बातें तो ढेर सारी हुई, बातें आगे और भी होंगी हमारे अगले कार्यक्रम में, लेकिन चलते चलते चलिए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।

चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। जी हाँ श्रोता बहनों, यूं ही अपने प्यार को देते रहिए और जुड़े रहिए हमसे और हमारे कार्यक्रम नारी संसार से। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ दीजिए विदा श्वेता को। नमस्कार।

नारी संसार महिला श्रोताओं को संबोधित यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। अब से कुछ देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और

0: चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आकाशवाणी दरभंगा से आज आप सुनिएगा दोपहर के 1:10 पर देशभक्ति गीत। एआर रहमान की आवाज होगी फिल्म रोजा में। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे दोपहर के 1:15 पर। हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनिएगा दोपहर 2:00। इलाकाई खबरों का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 2:05 पर। दोपहर 2:10 पर सुनिएगा रोजगार सूचना। दोपहर समाचार का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा दोपहर 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। लोकगीतों का आनंद आप ले पाएंगे दोपहर के 3:00। हमारी दूसरी सभा के आरंभ में संध्या के 5:00 सुनिए युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत तरुण मिथिला। संध्या 5:40 पर आप सुन पाएंगे नए फिल्मों के गाने फिल्म संगीत के अंतर्गत। संध्या के 6:10 पर सुनिएगा विद्यापति गीत। मैथिली संवाद का प्रसारण करेंगे संध्या 6:25 पर। गांव घर के अंतर्गत सुनिएगा जागरूक गांव कार्यक्रम। समय होगा संध्या 6:30 पर। इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का समय होगा संध्या 7:00। प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे संध्या 7:30 पर। संध्या 7:47 पर सुनिएगा जिले की हलचल। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे संध्या 7:52 पर। सिंगर हार यह कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। समाचार संध्या का समय होगा रात्रि 8:45 पर। रात्रि के 9:00 सुनिएगा न्यूज एट 9:00। रात्रि 9:15

नेट पर प्रसारित करेंगे उर्दू खबर। फिल्म संगीत का आनंद आप लीजिएगा रात्रि के 9:30 पर। रात्रि 10 बजे सुनवाएंगे लोकगीत। रात्रि के 10:30 पर सुनिएगा भारत नेपाल मैत्री संबंध पर आधारित कार्यक्रम हम एक हैं। सोनबरसा और आसपास के क्षेत्र में लोगों से की गई बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम में आलेख एवं वाचन सज्जाद अहमद खान का होगा और प्रस्तुति असद दाऊद की।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी दरभंगा है।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत। ए आर रहमान की आवाज में सुनिए फिल्म रोजा से।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जिंदगी की तमाम रंगीनियों को देखने के लिए खुदा ने हमें जो बख्शा है वो है दो आंखें। जी हाँ, दुनिया की तमाम चीजें जिनसे हम रूबरू होते हैं, जिनके रंगों को, जिनके आकार को किसी भी तरह से हम देखते हैं, चाहे वो खूबसूरत दिलकश नज़ारे हों, चाहे वो कोई चेहरा जो हमें पसंद आता हो, ये सब आँखों से ही तो दीदार करते हैं हम। जी हाँ, ये आँखें ना होती तो न जाने क्या कुछ ना देख पाते हम। यूँ तो दुनिया में हज़ार लोग हैं जो मन की आँखों से ही सब कुछ देख लेते हैं। आज बातें इन्हीं आँखों के बारे में। तमाम लिखने वालों ने आँखों के बारे में कई तरह की चीज़ें लिखी हैं, आइए उनमें से कुछ से आज रूबरू होंगे। फिराक गोरखपुरी लिखते हैं, जो उन मासूम आँखों ने दिए थे, जो उन मासूम आँखों ने दिए थे वो धोखे आज तक मैं खा रहा हूँ। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आंखें उठी तो दुआ बनी, आंखें झुकी तो हया बनी, आंखें तिरछी हुई तो कजा बनी। ये आंखें ही थी न जाने क्या क्या कितनी दफा बनी।

0: फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम जारी है एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आंखें जो उठाए तो मोहब्बत का गुमा हो, आंखें जो उठाए तो मोहब्बत का गुमा हो, नजरों को झुकाए तो शिकायत सी लगे है, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम जारी है इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। ये दिल है जो किसी की यादों में दिन बिताता है, रात भी बेचैन करता है। गुमशुदा से रहते हैं चांद सितारे भी, दिल भी खोया खोया सा रहता है और रात रात आंखों में गुजर जाती है।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम जारी है एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कुछ तो है जो रखा है जमाने में मेरी खातिर, तुमने पलके उठाई हैं मेरी खातिर, मैं डूबता हूं आंखों में मेरी खातिर, इन आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मिलती हैं निगाहें वहीं जहां दिल सजदा करता है, मिलती हैं निगाहें वहीं जहां दिल सजदा करता है, मगर तड़पता है ये दिल जब आंखें देखती हैं जुदा होते अपने यार को।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी है एक अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं।

पलकों में किसी को बिठाकर बंद आँखों को कर लिया जाए, ज़िंदगी को कुछ यूं ही बसर कर लिया जाए, दिल में तुझे बिठा के बंद कर लूँ अपनी आँखें।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। तलब करें तो ये आंखें भी इनको दे दूं मैं, तलब करें तो ये आंखें भी इनको दे दूं मैं, मगर ये लोग इन आंखों के ख्वाब मांगते हैं।

फिल्म गीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। दोपहर के 2:30 पर आप पुनः आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी को यूजी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और उन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम एक प्रगतिशील प्रणाली है। भारत के कई विश्वविद्यालय और संस्थान, साथ ही विश्व भर के कई संस्थान इस प्रणाली को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब सीबीएसई ने देश में इस प्रणाली को लागू किया है। श्री प्रधान ने बताया कि लगभग 4 करोड़ स्कैन किए गए पृष्ठों का मूल्यांकन पहली बार सीबीएसई द्वारा ओएसएम प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कुर्बानी का त्यौहार बकरीद आज मनाई जा रही है। ईद उल अजहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजर इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में खास नमाज अदा की गई है। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में भी आज सुबह खास नमाज अदा की गई। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल

सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ 42.8 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 में घर का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में तेज आंधी और बारिश के दौरान कच्चे मकान के ऊपर एक पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी और दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तरफ भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड के भोजपुर गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली का पोल गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी अंत्योदय ट्रेन के एक डिब्बे में आज सुबह आग लगने की घटना हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय रेल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
4: ये आकाशवाणी दरभंगा है, अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
6: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
7: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही,

0: इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in और हमारे newsonir ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
2: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार

0: और ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का

0: रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से और DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गाना सुनवा रहे हैं मोहित चौहान और जावेद अली की आवाज में, बोल लिखे इरशाद कामिल ने और संगीत है ए आर रहमान का। फिल्म है रॉक स्टार।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में। निदा फाजली के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने। फिल्म है तमन्ना।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए, कौसर मुनीर की कलम से निकला हुआ। प्रीतम के संगीत में आवाज दी है अदनान सामी ने। फिल्म है बजरंगी भाईजान।

फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए रूप कुमार राठौर की आवाज में। सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है मिथुन ने। फिल्म है अनवर।

इस गाने के संग फिल्म संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। फिल्म संगीत का पुनः आप आनंद ले पाएंगे संध्या 5:40 पर। अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम सुनवा रहे हैं अरविंद कुमार झा के स्वर में कुछ लोकगीत।

अभी आप लोकगीतों का आनंद ले रहे थे। कलाकार थे अरविंद कुमार झा। इसी कार्यक्रम के संग हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हो गए हैं। हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के संग हम पुनः संध्या 5 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: जीतती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75% आए।
1: ये तो होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए, एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है।
1: उन्हें उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बड़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है, और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है। बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने, मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है। कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की। प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं, इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूं, करता कुछ नहीं है। तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है, उन्हें सिखाए। और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और लेकिन उस चीज को लेकर इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम हो जाती है। इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए।
0: क्या बात है,
1: ताकि एक हमारे आगे कर सकें।
0: जी, एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखें। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं, लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरह की जो चीजें वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है.
1: बिल्कुल. वो तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के.
0: कि देखिए कभी कभी ऐसा था ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत हो

0: डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है। उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे हो, की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
1: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपने जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी और वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है, है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात लिखी है ना।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैया रवैये की जरूरत होती है जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करें, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताएं कि भाई हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें
1: जी।
0: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक देखिए, तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए ऐसा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी है ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मिया होती है, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल कंप्यूटर वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। और साथ ही बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गवा देते हैं।

0: ये कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है।
1: बिल्कुल
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी ज़रूरी चीज़ों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्ज़ाम दिए और उनकी छुट्टियाँ चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फ़ोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फ़ोन की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी की जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदि हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। यह दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो बाहर जब गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल, वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पे भी बुरा असर पड़ता है।
0: और ये जो गेमिंग जो है जो होती है ना इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं, पानी में गिर जाए तो भी उन्हें कुछ पॉइंट अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो ये बच्चे और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं तो उसके साथ उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है। एक हमारे साथी ने लिखा है दीपा, सॉरी
1: जी कोई नहीं,
0: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाएं या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
1: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता जो लिखते हैं कि आज के जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए गेम्स खेलना बुरा नहीं है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है, पढ़ाई, खेल कूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुने,
0: सुनते हैं गीत।
2: ¶¶

0: साथ ले ले,
1: अच्छे हम अकेले
0: जालिम साथ ले ले,
1: अरे अच्छे हम अकेले
0: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
1: हाँ समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे समझे।

0: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
1: बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक
0: जी।
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है, या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
1: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है, तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा तक,
1: वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए
0: जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
1: की रफ्तार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब धीमी हो गई,
0: धीमी हो गई,
1: क्योंकि बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है, या कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर है तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है, तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं, सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं, तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है
0: जी।
1: तो कभी कभी ये होता है ना, कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्पीड,
1: कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है थोड़ी दूर तक है, तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकते हैं, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे, ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा, जैसे ऑटो अपडेट या

0: सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना तो फिर उसकी आपके फोन के स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे एप्स खुले हुए हैं, अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे एक ही टाइम, तो सारे अगर एप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है,
1: तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको।
0: और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें, यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल इन्हें आड़ा रखें, यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही एक है ना फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सके, वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: आप एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीज़ें जो हैं जो हमने अभी बताई, वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उनका है कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या बात है। तो बधाई हो।
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग तो लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे दोस्त होते हैं जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर

0: ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी
0: बिल्कुल
1: है, तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसको ध्यान रखिए, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे, और अति हर चीज के लिए
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जे, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें?
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आरती आज की मुलाकात,
1: आज की मुलाकात बस
0: इतनी, और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कंबाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब भी हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था। पूरा कार्यक्रम जितना चलता है भाते शुरू से, सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिसनर हैं आप,
1: यही जान लीजिए। हम इसी समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6 साल जब से, यानी हम बहुत संभाल हैं, सबसे सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे हाँ आप जी, क्या जी, करते हैं, खेत में काम करते
1: जी,
0: हैं?
1: पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, तो इसमें गर्मी टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले आते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बजता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
0: काम कहाँ करते हैं?
1: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी, हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदाकिनी जी,
0: नमस्कार।
1: मैडम खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजीपीर उदयपुर से, झीलो की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम, गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीले हैं, चारों तरफ झीले फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीले हैं काफी, क्या कह रहे, धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है, और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेहसागर के आसपास, और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं, और झीले भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं
1: जी।
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है, आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
0: जी।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने, चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: सुहाने दिन।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
2: मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
2: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
1: अरे वाह,
2: तीसरी बार बात हो रही है।
1: क्या बात है,
2: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
1: हाँ।
2: अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
1: जी क्या बात है, तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
2: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उससे मैं क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
1: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
2: और पत्र भी भेजे अभी भारतीय के स्टूडियो में।
1: अच्छा,
2: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
1: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
2: बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा।
1: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में, की बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है?
2: बताइए की मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
1: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
2: देखो
1: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
2: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो। दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बस वही बात है।
1: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के, इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का।
2: बिल्कुल, और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायागीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता तो फिर वापस से यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
1: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायागीत।
2: छायागीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं तो वो क्या है कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं।
1: हाँ।
2: और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
2: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा, हमजोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है यहाँ भी, मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के, मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाएं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी जुड़े हुए हैं मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रांझा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल के रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा सिलाई करते हैं, घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक में ही है।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान, बारदान जिसमें अनाज भरा था, गेहूँ, दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और पीसते हैं।
0: अच्छा जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी,
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते

0: तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
1: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या, क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
0: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है, और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
1: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से, कट फट जाती है। अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: फिल्म का नाम है काला पत्थर, और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
1: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो

0: 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
1: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
0: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
1: हाँ।
0: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
1: अच्छा, दोबारा लगेगा तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
0: मेहनत तो है मैडम जी,
1: हाँ। और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
0: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
1: बाजरी के आटे की।
0: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
1: अच्छा, मोठ का भी?
0: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं। ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है टाने के लिए।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
0: हाँ जी, हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बनकर तैयार हो जाता है।
1: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
0: हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल
1: जी। चलिए, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
1: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: डॉक्टर माइस नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
0: ग्राम कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से विविध भारती का नियमित श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ मैम।
1: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
0: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम का हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो या नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 तक वो हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
1: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
0: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
1: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
0: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया, और शुक्रिया विविध भारती जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं, और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा। ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है, क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
1: अपने
0: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
0: जी,
1: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
0: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
1: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, तो कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के फनकार सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: नील

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू, ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक, क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं CRPF कमांडू में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं अपनी?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

स्वागत है कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत तरुण मिथिला में। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र भवेश। स्वीकार करें मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं सिंधु बाला के स्वर में इस मैथिली सुगम संगीत के साथ।

गौरी फूल लोढ़े। श्रोता अभी सुन रहे थे ये महेशवाणी विभा सिन्हा के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण मिथिला।

कार्यक्रम तरुण मिथिला का समय अब यहीं तक। श्रोताओं से हम विदा लेते हैं अगले अंक तक के लिए, तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह को अभी आप सुन रहे थे फिल्म हेट स्टोरी 2 में। गीत के बोल मिथुन और संगीत निर्देशन मिथुन का था।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अरिजीत सिंह को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कबीर सिंह में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को

0: पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धरमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर

0: बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डी के शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में

विद्यापति गीत आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी संध्या 6:10 पर। इसके तुरंत बाद मैथिली संवाद आप सुनेंगे संध्या 6:25 पर। हमारा सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जागरूक गाम। प्रसारण समय होगा संध्या 6:30 से। खेती गृहस्थी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00।

कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:52 पर। फिल्म संगीत का आनंद पुनः एक बार आप लेंगे आज रात 9:30 से।

रात 10 बजे समय होगा लोकगीतों के कार्यक्रम का। भारत नेपाल मैत्री संबंध पर आधारित कार्यक्रम हम एक हैं आप सुनेंगे रात 10:30 से।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का हमारा कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति रामकुमार मल्लिक के स्वर में ये विद्यापति गीत।

ये विद्यापति गीत अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा के स्वर में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी प्रियंका कुमारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षाक संशोधित तिथि आ प्रवेश पत्र जारी कयल गेल। एनटीए के अनुसार परीक्षा सब आब 31 मई 6 तथा 7 जून के आयोजित कयल जायत। आई होय वाला परीक्षा ईद उल अजहा बकरीदक कारणे आगू बढ़ाओल गेल छल। एनटीए द्वारा कहल गेल जे रवि दिनक परीक्षा

परीक्षा दै वाला परीक्षार्थी सभक प्रवेश पत्र जारी कऽ देल गेल अछि आ एकरा एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in सँ डाउनलोड कयल जा सकैत अछि। 6 आ 7 जून के परीक्षा दै वाला शेष उम्मीदवार सभक प्रवेश पत्र जल्दीए जारी कयल जायत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहलनि जे CBSE कक्षा 12वीं परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में किछु कमी एलाक बाद आब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कयल जायत। नव दिल्ली में CBSE अधिकारी सभक संग बैसारक बाद संवाददाता सबसे गपशपक क्रम में श्री प्रधान कहलनि जे अधिकारी ई सुनिश्चित करता जे सब विद्यार्थी सभक शिकायतक समाधान कयल जाय और सब स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित कयल जाय। श्री प्रधान कहलनि जे ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM एकटा प्रगतिशील प्रणाली अछि। ओ कहलनि जे 4 करोड़ स्कैन कयल गेल पृष्ठक मूल्यांकन पहिल बेर CBSE द्वारा OSM प्रक्रियाक माध्यम सँ कयल गेल अछि। कुर्बानीक त्यौहार बकरीद आइ मनाओल जा रहल अछि। ईद उल अजहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम आ हुनकर बेटा हजरत इस्माइलक कुर्बानीक याद में मनाओल जाइत अछि। हमर संवाददाता कहलनि जे एहि अवसर पर विभिन्न मस्जिद आ ईदगाह सब में खास नमाज अदा कयल गेल। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में सेहो आइ भोरे खास नमाज अदा कयल गेल। एम्हर बकरीद के लऽ कऽ पूरा प्रदेश में सुरक्षाक सख्त इंतजाम कयल गेल अछि। संवेदनशील स्थान सब पर अतिरिक्त पुलिस बलक तैनाती कयल गेल अछि। सोशल मीडिया पर सेहो विशेष नजरि राखल जा रहल अछि। बकरीदक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सब गोटे के बधाई देलनि अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आइ सँ 2 दिवसीय दिल्ली दौरा पर छथि। एहि दरमियान ओ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सँ भेंट करतैत। श्री चौधरी राष्ट्रपति के भागलपुरक तिलकपुर गाम में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझीक प्रतिमाक अनावरण कार्यक्रम में शामिल हेबाक लेल निमंत्रण देतैत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहि मासक 31 तारीख के आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम में अपन विचार साझा करतैत। ई एहि मासक रेडियो कार्यक्रमक 134वीं कड़ी होयत। एकर प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शनक पूरा नेटवर्क AIR न्यूज वेबसाइट आ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कयल जायत। मौसम विभाग मधुबनी, शिवहर आ सीतामढ़ी जिलाक किछु भाग सब में तेज हवाक संग वर्षा आ वज्रपातक संभावना जतौलक अछि। एहि दरमियान 50 सँ 60 किलोमीटर प्रति घंटाक रफ्तार सँ हवा चलि सकैत अछि। एम्हर पिछला 24 घंटाक दरमियान कैमूर जिलाक भभुआ 42.8 डिग्री सेल्सियसक अधिकतम तापमानक संग प्रदेशक सबसँ गर्म स्थान रहल। वज्रपातक अलग अलग घटना सब में 8 गोटेक मृत्यु भऽ गेल। पूर्वी चंपारण जिलाक सुगौली थाना क्षेत्रक वार्ड संख्या 12 में घरक एकटा हिस्सा खसला सँ मलबा में दबिकऽ 1 व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एहि हादसा पर शोक जतबैत मृतकक निकटतम आश्रित सबके 4.4 लाख रुपैयाक अनुग्रह अनुदान देबाक निर्देश देलनि अछि। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर ठाढ़ अंत्योदय ट्रेनक एकटा बोगी में आइ भोरे आगि लागि गेल। सूचना भेटते ही स्थानीय रेल प्रशासन द्वारा आगि पर काबू कयल गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

आजुक गाम घरक तलान पर सब श्रोता लोकन के स्वागत संगे सब गोटे के अनिल भाईक नमस्कार। आई बृहस्पति दिन आजुक दिन गाम घरक दलान पर हम सब सुने छे कार्यक्रम जागरूक गाम। आब हम सब अई कार्यक्रम में खास को जागरूक गाम कार्यक्रम में जागरूकता संदर्भ में गप करब संगे रोजी रोजगार के गप करब। आई ए कार्यक्रम में हम सब सौ से पहिने गप करब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, एकर बाद गीतनादक आनंद लेब, ओकर बाद हम सब सुनब प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। तो सब से पहिने आओ श्रोता लोकन गप करी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगर लोकन के आ शिल्पकार लोकन के कौशल में निखार अनबाक लेल संगे आर्थिक मदद करबाक लेल हिनका सभक लेल ई एकटा केंद्रीय योजना अछि। एहि योजना के अंतर्गत सरकारक दिस सॅ टूल किट के लेल 15,000 टका संगे 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता देल जेबाक प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। एकर अतिरिक्त 5% ब्याज पर 3,00,000 टका धरि के ऋण बिना गारंटी के देबाक सेहो व्यवस्था कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभ के संदर्भ में गप करी तो सबसे पहिल गप एखने किछु काल पहिने चर्च केलहुँ जे टूल किट प्रोत्साहन आधुनिक औजार आ उपकरण सबके किनबाक लेल 15,000 रुपया अनुदान देल जाइत अछि। कौशल प्रशिक्षण कारीगर लोकनि के 507 दिन के बेसिक आ एडवांस ट्रेनिंग देबाक सेहो व्यवस्था कयल गेल अछि। एहि प्रशिक्षण के अवधि में 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता देल जाइत अछि। सस्ता लोन व्यवसाय के आरंभ करबाक लेल वा व्यापार के आगू बढ़ेबाक लेल बिना कोनो गारंटी के 3,00,000 रुपया धरि के ऋण देबाक प्रावधान अछि। एहि में मात्र 5% के दर से ब्याज लेल जाइत अछि। सब किछु संपन्न भेला पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आ आईडी कार्ड सेहो प्रदान कयल जाइत अछि। एहि योजना से लाभ लेबाक लेल पात्रता के संबंध में जो विचार करी आवेदक के आयु कम से कम 18 वर्ष हेबाक चाही। आवेदक के असंगठित क्षेत्र में काज करय वाला कारीगर व शिल्पकार हेबाक चाही। कोनो परिवार के मात्र एकटा सदस्य के एहि योजना से लाभ भेट सकैए। श्रोता लोकनि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 व्यवसाय के शामिल कयल गेल अछि जे एहि तरहे अछि, जेना लकड़ी के काज करय वाला बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार के निर्माता, लोहार, हथौड़ा टूलकिट निर्माता, ताला बनबय वाला, कुम्हार, सोनार, मूर्तिकार, मोची जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई व झाड़ू निर्माता, नाई, धोबी, दर्जी, माला बनबय वाला, माछ के जाल बनबय वाला, संगे गुड़िया खिलौना बनबय वाला, एहन जे व्यक्ति एहि काज में लागल छथि हुनका एहि योजना के अंतर्गत लाभ भेट सकैए। तो श्रोता लोकनि आवश्यकता एहि गप के सरकारक ई प्रयास रहैए जे कोनो एहन व्यक्ति छथि जे आगू बढ़य चाहैत छथि जीवन में और संगठित क्षेत्र में काज करै छथि, तो सरकारक दिस सॅ बहुत रास योजना सब चलि रहल अछि। ओहि योजना

जानकारी ली। जानकारी के उपरांत आवेदन करी, लाभ उठावी, अपन घर में समृद्धि आनी और समृद्धि कथा अपना हाथ से लिखी। तो श्रोता लोकन गप करब, गीत नादक आनंद ली, सुनी हम सब एकटा सुंदर संगीत।

0: खूब सुंदर। एखन जे हम सब गीत सुन रहल छलहुँ, गीतक कलाकार छली विदुषी शारदा सिन्हा, अपन सभक मिथिलांचल, एहिठामक सभ्यता, एहिठामक संस्कृति, एहिठामक खान पान, एकर अतिरिक्त ओना सब क्षेत्रके अपन अपन खास विशेषता रहल अछि, मुदा मिथिलांचलमे सेहो बहुत रास एहन स्थल अछि, एहन जगह अछि जे दर्शनीय अछि, पर्यटनके हिसाबसँ बड्ड बेसी महत्वपूर्ण अछि। एहि मिथिलांचलमे जकरा हमसब पहिने मिथिला वा तिरहुत नामसँ सेहो जानल जाइत अछि, बिहारके प्राचीन आ सांस्कृतिक रूपसँ ई समृद्ध क्षेत्र अछि। एहि मिथिलांचलके भूमि रामायण कालीन विद्यापतिक रचना, विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग आ अपन विशिष्ट सांस्कृतिक पहचानके लेल प्रसिद्ध अछि। मिथिलांचलके भ्रमण करब भारतके प्राचीन इतिहास आ आध्यात्मके करीबसँ बुझब जेना अछि। मिथिलांचलके किछु खास जे पर्यटन स्थल अछि जँ गप करी, जनकपुर हालांकि नेपालमे आबै अछि, मुदा मिथिलाक सांस्कृतिक ऐतिहासिक राजधानी, एहिठामक भव्य जानकी मंदिर माता सीताक जन्म स्थान मानल जाइत अछि, एहिठामक राम सीता विवाह मंडप, रत्न सागर मंदिर सेहो देखबा योग्य अछि। एकर अतिरिक्त सीतामढ़ीमे पुनौरा धाम, एहन मानल जाइए राजा जनक एहिठाम खेतसँ हर जतवा कालमे माताके सीता प्राप्त भेल छली, एहि स्थलके पुनौरा धामके रूपमे जानल जाइत अछि। सीताराम सर्किटके एकटा ई महत्वपूर्ण हिस्सा अछि। अहिल्या स्थान दरभंगे लगमे अछि, कमतौलके लगमे स्थित ई स्थान अपनेके रामायण कालसँ जुड़ल अछि। एहन मान्यता अछि जे एहिठाम भगवान रामके चरण स्पर्श ऋषि गौतम के पत्नी अहिल्याक उद्धार भेल छल। दरभंगा सँ लगभग 65-70 किलोमीटर दूर कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, एहिठाम प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर अछि। एहिठामक आर्द्रभूमि जाड़क मास मे मंगोलिया आ साइबेरिया सँ दूर दूर सँ प्रवासी पक्षी सब एहिठाम अबै छथि। मधुबनीक लगमे अछि उच्चैठ भगवती मंदिर, बेनीपट्टीक लग अछि ई मंदिर, माता कालीके समर्पित अछि। एहन मानल जाइए जे महाकवि कालिदासके एहिठाम भगवतीके आशीर्वाद प्राप्त भेल छल, सङ्गे एहिठाम हुनका ज्ञान सेहो भेटल। कपिलेश्वर स्थान मधुबनी, दरभंगा मधुबनीक मध्यमे एहिठामक प्राचीन शिव मंदिर अछि जे रहिका प्रखंडमे स्थित अछि। सावन मासमे एहिठामक बड्ड नम्हर मेला लगैए। अपन शहर दरभंगामे दरभंगा किला, एकरा दरभंगाक राज किला सेहो कहै छी, 18वीं शताब्दीमे महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह द्वारा निर्मित ई किला राजपूत आ मुगल वास्तुकलाके मिश्रण अछि। एहि परिसरके भीतर भव्य महल आ बहुत रास मंदिर सब सेहो अछि। राजनगर पैलेस मधुबनी महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा बनवाओल गेल ऐतिहासिक महल अछि, जकरा नौलखा पैलेस के रूप में सेहो जानल जाइए। हालांकि अभी जीर्णशीर्ण अवस्था में अछि, मुदा एकर वास्तुकला आइ सेहो पर्यटन लोकनि के बेस आकर्षित करै छै। तऽ श्रोता लोकनि, आब बेर भऽ चलल अछि सुनी हमसब प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
1: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 620-680-3040, 620-680-3040, ये नंबर है। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं। कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूं, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूं, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया और इस समय पिछले 2 सालों से नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गाँव जैसे जगहों पर। और अब धीरे धीरे खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
0: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
1: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक

0: होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर से भी पेशेंट आ रहे हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबो के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे, कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं, नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
0: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना, तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहां पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहां पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहां पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायना नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन हैं, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयू में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयू है, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है ऑफ कोर्स जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे की हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है, तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है। और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, ये सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 6206803040, 6206803040, ये नंबर है, ये नंबर है, इस पर

0: आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है? क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
1: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मैल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयां जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट के बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामणि, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो दूसरे को बताएंगे, बहुत पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
0: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, 6206803040, 6206803040 ये नंबर है। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
0: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: श्रोता लोकनि, एखन हम सब सुनि रहल छलहुँ प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। एहि संग आब आजुक जागरूक गाम कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबा पर, खेतीग्रस्ती कार्यक्रम में सबटा अन्नदाता बंधु लोकनि के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। खेती पथारी वाला काजक संग हम सब पशुपालन त अदौ काल से करैत आबि रहल छी। किछु किसान भाई लोकनि छोट स्तर पर, तो किछु किसान भाई लोकनि एकरा नमहर स्तर पर करै छै। समय आ मौसम लगातार बदल रहल अछि, एहि कारण हमर सभक खेती संगे संग पशुपालन सेहो प्रभावित भऽ रहल अछि। तऽ किसान भाई लोकनि आइ गप करब खेती गृहस्थी में।

जलवायु परिवर्तन आ पशुपालन के बीच एकटा गहीर संबंध अछि। बढ़ैत तापक्रम आ मौसम के अनिश्चितता कारण पशु के स्वास्थ्य आ दूधक उत्पादन में बड़ बेसी कमी भ रहल अछि। संगे पशुपालन सँ निकल वाला मीथेन गैस जलवायु परिवर्तन के बढ़ो में बेस भूमिका के निर्वहन क रहल अछि। पशुपालन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में जो विचार करी तो सबसे पहिल गप एखने चर्च केलहुँ जे मालजालक दूधक उत्पादन में कमी भ जाइए। वातावरण के तापक्रम लगातार बढ़ रहल अछि, खास कऽ जखने तापक्रम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़िए तो पशु सब में हीट स्ट्रेस गर्मी के कारण तनाव उत्पन्न होइए। एहिसँ दुधारू पशु के दूधक उत्पादन बड्ड बेसी प्रभावित होइए।

उत्पादन में कमी भऽ जाइए। वातावरण के तापक्रम लगातार बढ़ि रहल अछि, खास कऽ जखने तापक्रम 35 डिग्री सेंटीग्रेड सँ ऊपर बढ़ैए तऽ पशु सबमे हीट स्ट्रेस गर्मी के कारण तनाव उत्पन्न होइए। एहिसँ दुधारू पशु के दूधक उत्पादन बड्ड बेसी प्रभावित होइए। एकर अतिरिक्त प्रजनन क्षमता पर असर सेहो होइए। बड्ड बेसी गर्मी सँ पशु के प्रजनन क्षमता बेस प्रभावित होइए, संगे बाछा बाछी सभक स्वास्थ्य पर सेहो प्रतिकूल प्रभाव पड़ैए। मालजालक लेल भोजन के रूप में जे चारा के व्यवहार करै छी, चारा के कमी भऽ जाइए। रौदी आ अनियंत्रित मौसम के कारण हरियर चारा के अभाव चारा के गुणवत्ता में सेहो बड्ड बेसी परिवर्तन भऽ रहल अछि, जाहिसँ किसान भाई लोकन के लागत मूल्य बड्ड बेसी बढ़ि रहल छनि। पशुपालन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में जँ विचार करी, ग्रीन हाउस उत्सर्जन जते पाउज करय वाला पशु सब अछि, जेना गाय महीस, ई पशु सब पाचन क्रिया के समय में बड्ड बेसी मिथेन गैस छोड़ैए, जाहिसँ वातावरण प्रदूषित होइए। ई गैस कार्बन डाइऑक्साइड सँ बेसी खतरनाक अछि, संसाधन सब पर बेसी दबाव होइए। पशु सभक चारा आ सोया जेहन फसिल सब के लेल जंगल के बेस क्षेत्रफल वा रकवा के काटि देल जाइत अछि। एहि सब कारण सँ जलवायु में बड्ड बेसी परिवर्तन भऽ रहल अछि। एकर समाधान अनुकूल रणनीति बनेबाक आवश्यकता अछि। पशुपालन के संदर्भ में जँ विचार करी तऽ मौसम के अनुकूल नस्ल के चुनाव करक चाही। स्थानीय जलवायु जतय अपने रहै छी ओहिठाम के मौसम आ जलवायु के अनुकूल गर्मी के सहन करय वाला मालजाल पोषक चाही। ओकर उचित प्रबंधन करी, गर्मीक मास मे मालजाल के छाहरि वाला स्थान वा शेड बनाकर राखी, पीबाक लेल साफ स्वच्छ आ ठंडा पानि देबाक चाही, संतुलित आहार के व्यवस्था सेहो करक चाही। पशु के चारा में ऊर्जा आ प्रोटीन के संतुलन बना कर राखी, जाहिसँ गर्मी के असर कम भऽ सके। श्रोता लोकनि, गप करब किसान भाई लोकनि, गीत नादक आनंद ली, सुनी एकटा सुंदर सन ई फसिल गीत।

0: खूब सुंदर। एखन जे हम सब गीत सुनल छलहुँ, गीतक कलाकार पूनम कुमारी, अपन सभक मिथिलाञ्चलमे एहिठामक पान मखान आ माछ, एकर स्वाद अपूर्व अइ, पौष्टिकतासँ भरल अइ, सबके अपन अपन महत्व छै। मखान तऽ मिथिलाञ्चलक परिचय अइ, तऽ आइ हमसब एकटा मखानसँ सम्बन्धित भेंट वार्ता सुनी। एकटा किसान छथि जे मखान उत्पादनके क्षेत्रमे नीक काज कऽ रहल छथि, बिरौलमे रहै छथि, राजा सहनी। तऽ ई कोना काज करै छथि, एहिसँ हुनका केहन लाभ हानि होइ छनि, तऽ हुनकासँ ई गप सुनी हमसब। भेंट वार्ता कर छथि राजा सहनी, हिनका सङ्ग गप कऽ रहल छथि अनिल कुमार कर्ण। तऽ दुनू गोटेक बीच जे गप भऽ रहल अइ से सुनी हमसब।
1: खेती गृहस्थी कार्यक्रममे एकटा मखान उत्पादक छथि राजा सहनी। राजा सहनी जी, अपनेके खेती गृहस्थी कार्यक्रममे बहुत बहुत स्वागत, सङ्गे अपनेके नमस्कार।
2: अनिल जी, आपको आकाशवाणी दरभंगा के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में बजाबक के लेल अहाँ के धन्यवाद और नमस्कार करै छी।
1: तो राजा सहनी जी, सबसे पहिने तो हमरा ई कहू जे अपन परिचय देल जाओ, अपने के घर कतो भेल, पिताजी के की नाम छी?
2: हमर घर भेल सुपौल बाजार बिरौल दरभंगा, पिताजी के नाम भेल श्री कैलाश सहनी। हम BCOM 2020 में करलें छी।
1: कतो से पास के लिए अपने BCOM?
2: JK कॉलेज बिरौल।
1: अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा कतो से भेल?
2: प्रारंभिक शिक्षा अपन ग्रामे में भेल।
1: ग्रामे में अपने पढ़लिए ने? सबसे पहिने हमरा ई कहल जाए जे मखान उत्पादन के क्षेत्र में एवा के अपने के प्रेरणा किनका से आ कतो से भेटल?
2: ई ते भेल हमरा सब के पूर्वजे के काम,
1: माने पुस्तैनी काज है ने?
2: हाँ हाँ हाँ हाँ।
1: पिताजी अहाँ के सेहो किसान छै?
2: हाँ हाँ हाँ।
1: एक आदमी लागल छै?
2: हाँ।
1: अइ मखान उत्पादन के लेल अपने कतो से कोनो प्रशिक्षण ई सब सेहो लेने छी, ट्रेनिंग ई सब सेहो लेने छी?
2: नहि, पिताजी के ही देख रेख में सारा चीज, और ओही के बाद ई मखान अनुसंधान केंद्र डॉक्टर मनोज कुमार सर से अपन प्रेरणा लेने छी, हुनके अपन राय विचार में सारा अपन खेती करै छी।
1: अच्छा, तो मखान के जे उपजा होइए ओकर बिक्री आ वितरण सब के लेल अहाँ कोना की करै छी, केना एकरा करै छी?
2: मखाना के देखियो, हम सब ते किसान छी, मखान तैयार करै के बाद महाजन के अपन बुला के दे दै छी, ओहि के बाद मखान के क्वालिटीओ बना के अहाँ 4 सूता 5 सूता 6 सूता बाहरो मखान भेजै छी, सब सब बाज कर कर के, जेना दिल्ली भ गेल, जयपुर भ गेल, गुड़गांव, मुंबईओ भेजे छे मखाना।
1: अच्छा, तो अहाँ जे मखान के खेती करे छे, तो कते रकबा में करे थे लगभग?
2: हम तो 70 बीघा में करे छी।
1: 70 बीघा में करे

0: एकर खेती ना ते मखान में तो फसल सुरक्षा के लिए रोग व्याधि के लिए ई सब की सब करे छे माने आन फसल जका तो इहो में किछ न किछ रोग लगे थे ते
1: हाँ कुटका लगे छे
0: तो ओय लेल की करे
1: ओकर जैविक नियंत्रण करे छिए
0: जैविक नियंत्रण करे छिए। अच्छा हमरा ई कहू जे मखान के खेती के संबंध में जे लाभ हानि के अगर गणना कैल जाए एमे केना की आमदनी भ सके छे?
1: देखियो अपना आर के ते बाढ़ ग्रस्त इलाका छे। हेलो सर, बाढ़ ग्रस्त इलाका छे, कभी कभी ते बुझियो बहुत नुकसानो सहे पड़े छे हमरा सब। केते बेर ते बुझियो मखाना के खेती में रुलाइयो देलके, फल फूल लगले बुझियो पूरा भसिया गेले का,
0: पानी से भैंस गेले न। अच्छा,
1: एक बीघा में मोटा मोटी 20-25 हजार रूपया खर्च पड़े छे, बुझलिए सर।
0: आमदनी कते होय छे
1: अभी की कहे? अभी एक बीघा में 6 से 8 क्विंटल गुड़िया निकलत, वही हिसाब से अभी 27 हजार के छे, वही हिसाब से आप अपन कैलकुलेट कर लियो।
0: माने लाभ छे, परिवार के भरण पोषण एक काज से चल सके छे।
1: हाँ,
0: कोनो दिक्कत नहीं छे। तो मान लियो एहन कोनो व्यक्ति छे जे मखान के खेती आ उत्पादन के क्षेत्र में आवे चाहे छे, तो उनका अहाँ की संदेश देव चाहबे, अहाँ की कह चाहबे?
1: पहले तो वो आवे से पहले की कहे छे, पहले सब सारा चीज अपन समझ लिया, नहीं तो जे पहले करे छथिन तो हुनका लंग जाके पहले परीक्षण लो लिया, यहाँ नहीं तो अपन मखान अनुसंधान केंद्र में पहले सारा प्रशिक्षण लो लिया, उसके बाद ही अभी ये सब में।
0: माने कोनो काज करो से पहले ओकरा निक जका जानकारी हेबाक चाहिए, जब ट्रेनिंग के व्यवस्था हो, प्रशिक्षण के व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से जानकारी लो कर करबे तो निक लाभ कमा सके छी। बढ़िया गप। तो राजा सहनी जी, अपने मखान के खेती आ उत्पादन के संबंध में निक जानकारी दलो, ताहि लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद अनिल सर, संगे आकाशवाणी परिवार के सेहो कोटि कोटि धन्यवाद करे।
0: ठीक छे राजा सहनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम
2: एखन हमसब भेंट वार्ता सुन रहल छलहुँ, ई बाह्य ध्वनिंकन पर आधारित भेंट वार्ता छल। हमसब सुनलहुँ जे कोना व्यवसायके जँ मेहनत आ ईमानदारीक संग कयल जाय तऽ निश्चित रूपसँ ओ प्रयास प्रतिफल होइए, नीक रिजल्ट दैए, आजीविकाक साधन बनैए। तऽ राजा सहनी जी, अपनेके बहुत बहुत धन्यवाद। आब हमसब गप करब, आब बेर भ चलल अइ मौसम संबंधी सूचना के। तो मौसम संबंधी सूचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से जे मौसम संबंधी सूचना प्राप्त भेल अइ ओ अइ तरह अछि। 27 मई सँ 31 मई 2026 धरि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र सँ 27 सँ 31 मई के जे मौसम पूर्वानुमान अछि ओ अइ तरह अछि। अगला 3-4 दिन धरि उच्च तापक्रम, हवा में बेसी नमी रहत, संगे अनुकूल मौसमीय सिस्टम के प्रभाव सँ उत्तर बिहार के अधिकांश जिला सब में कतौ कतौ हल्लुक व मध्यम वर्षा 10 सँ 25 सेंटीमीटर भ सकैत अछि। किसान ओहि लोकनि ध्यान राखी, वर्षाक समय में तेज बसात सेहो चल सकैए, अन्हर बिहारि सेहो आबि सकैए। एकर औसत गति जे है 30 सँ 40 किलोमीटर प्रति घंटाक दर सँ रहि सकैए, किछ स्थान पर बिजली खसबाक सेहो संभावना अछि। एहि पूर्व अनुमानित अवधि में बेसी जिला में अधिकतम तापक्रम में कमी आबि सकैत अछि। हालांकि सारण, सिवान जिला सब में अधिकतम तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस धरि पहुँच सकैए, जखन कि न्यूनतम तापक्रम के संबंध में जँ गप करी तो 21 सँ 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रह सकैए। सापेक्ष आर्द्रता भिनसर में 70 सँ 75% आ बेरुपहर 35 सँ 40% धरि रहबाक अनुमान अछि। संगे एहि पूर्व अनुमानित अवधि में औसतन 20 सँ 25 किलोमीटर प्रति घंटाक दर सँ पूर्वा हवा चलबाक संभावना अछि।

किसान भाई लोकनि के लेल समसामयिक सुझाव सेहो देल गेल अछि। रबी मकई के कटाई आ भंडारण वाला काज के प्राथमिकता दऽ कऽ जल्दी से जल्दी संपन्न क ली। हालांकि एहि पूर्वानुमानित अवधि में वर्षाक संभावना देखैत एहि काज में सकांश रहबाक बेसी आवश्यकता अछि। ग्रीष्मकालीन मकई में तना छेदक कीट से बचाव के लेल नियमित रूप से निगरानी करैत रही। वज्रपात आ जखन मेघ गरजाए एहि समय में खेत में काज नहीं करी, बचल रही आ सुरक्षित स्थान पर शरण ली। लीची के जे फल पाक गेल ओकरा जल्दी से जल्दी तोड़ लेवाक सलाह देल गेल अछि। एहि अवस्था में अपने के शाही किस्म के जे लीची है ओहि गाछी सब में कोनो तरह कीटनाशी दवाई सबक छिड़काव नहीं करी। खरीफ मक्का के बुआई लेल खेतक तैयारी करी। जोतक काल में प्रति हेक्टेयर 100 से 150 क्विंटल सरल गोबरक खाद निश्चित रूप से देवाक चाही। संगे 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटासक व्यवहार अपने कऽ सकै छी। कुसियारक फसिल में कलिका स्मट रोग के प्रकोप हेबाक संभावना अछि, तैं कुसियार के गाछ सब में कारी रंग के कोनो धब्बा बुझवा में आवे त प्रभावित गन्ना के पॉलीथीन सँ सावधानी पूर्वक झाँपि कऽ काटक चाही आ ओकरा खेत सँ बाहर निकालि दी। रोग सँ नियंत्रण लेल प्रोपिनोकोनाजोल एकर दवाई के छिड़काव जे छै दवाई 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15-20 दिनक अंतराल पर अपने छिड़काव कऽ सकै छी। ई छल समसामयिक सुझाव। चलैत चलैत हम सब गीत नादक आनंद ली। सुनी ई गीत।

खूब सुंदर। एखन जे हम सब गीत सुनल छलहुँ गीतक कलाकार छली कुमकुम झा, श्रोता लोकनि आब एहि गीतक संग आजुक खेती गृहस्थी कार्यक्रमके समय सम्पन्न हेबा पर अनिल भाईके चलबाक आज्ञा देल जाए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो

0: बिजली बिल कैसे पॉसिबल है? पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत एनडीए नेताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां जारी की। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर कहा कि श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि PMAYG के तहत 4,95,00,000 आवास के लक्ष्य के मुकाबले 3,91,00,000 आवास को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। श्री चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से अधिक मकान का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार

0: के लिए निरंतर काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PMAYG के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को भागलपुर के तिलकपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देंगे।
1: कल राष्ट्रपति जी को महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलकर उनको आग्रह करने वाला हूँ कि बिहार आप आइए। हमारे लिए गौरव की बात है कि महामहिम आदिवासी समाज से आती है और पहली बार कोई आदिवासी समाज के लोग इस देश में महामहिम राष्ट्रपति बनी है। तो मैं उनसे आग्रह करने वाला हूँ कि आप चलकर बिहार की धरती पर जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है वहाँ उनका एक भव्य मूर्ति लगा है उसका उद्घाटन करने का काम करें।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 के संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है।
3: कल हमने तृतीय अनुमान जारी किए हैं, मुझे फिर दोहराते हुए खुशी है कि इस वर्ष जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित जो है 3,765.63 लाख टन है, जो पिछले साल की तुलना में 188 लाख टन अधिक है। यह अब तक का रिकॉर्ड है और इसके लिए मैं भारत के किसानों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में, बढ़ते तापमान में, क्लाइमेट चेंज के इस वातावरण में उन्होंने अद्भुत परिश्रम किया है।
0: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है, जो बिहार सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य परिचालनशील राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाना है। कुर्बानी का त्यौहार बकरीद आज पूरे अकीदत और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। एक रिपोर्ट।
4: त्याग और समर्पण के संदेश का पर्व बकरीद को लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज सुबह बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए एकत्रित हुए। अमन, खुशहाली और आपसी सौहार्द की दुआ मांगी गई। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में भी विशेष नमाज अदा की गई। बकरीद को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्र

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन तथा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। समाचार कक्ष से निदेशश्री।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल eirnews_patna पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 4 मेडल जीते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि 26 से 28 मई तक बेंगलुरु में खेले गए इस चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने बताया कि शैलेश कुमार और हिमांशु यादव ने पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर मध्य के मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।
1: राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों मधुबनी, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 4 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ 39.9 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2 तथा मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले के 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 में घर का हिस्सा गिरने से 1 व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में तेज आंधी और बारिश के दौरान कच्चे मकान के ऊपर एक पेड़ गिरने से 1 महिला की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी और दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तरफ भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड के भोजपुर गाँव में तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली का पोल गिरने से 1 महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताया और मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की कई कंपनियों ने हजारों युवाओं को नौकरी दिए। एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेले का आयोजन 25

0: 21 मई से शुरू हुआ जो 27 मई तक चला। मेले में कुल 10,882 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों ने रोजगार के अवसर प्रदान किए। मेले में जर्मनी, जापान, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान समेत विभिन्न देशों में 1,984 प्रतिभागियों को रोजगार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। मेले में भाग लेने आए अभ्यर्थी प्रियांशु पांडे ने अपना अनुभव साझा किया।
1: भरोसेमंद मेला है के तहत हम लोग को काफी सारे रोजगार के अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल पा रहे हैं। कोई भी कोई नॉर्मल ग्रेजुएट उसको भी जॉब मिल रहा है, कोई आईटीआई किया है उसको भी जॉब मिल रहा है, और कोई अच्छा कोई डिग्री कोर्स किया है तो उसको भी जॉब मिल रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक तरह से बिहार जो है बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, और ऐसे अगर रोजगार मेले काफी और भी आने वाले समय में होते रहेंगे हमें काफी अच्छा अनुभव होगा।
0: रोजगार मेले के सफल समापन के अवसर पर युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने चयनित युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
2: समस्तीपुर के सुल्तानपुर दियारा के पास आज सुबह एक नाव हादसे में 3 लोगों के डूबने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग लापता लोगों की तलाश जारी है। एक रिपोर्ट।
0: आज समस्तीपुर जिला के सुल्तानपुर दियारा मोहिनुद्दीन नगर से वापस लौटने के दौरान एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना सुबह लगभग 5:45 पर हुई। बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ घाट के समीप बींद टोली के कुल 14 लोग नाव पर सवार थे। राहत और बचाव दल के द्वारा 7 लोगों को बचा लिया गया, जबकि अब तक 3 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। अन्य 4 लापता लोगों की खोज की जा रही है। समस्तीपुर जिला प्रशासन और पटना जिला प्रशासन के द्वारा समन्वय स्थापित कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
2: मुंगेर जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद चौक के पास खड़ी एक पिकअप वाहन से 15 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप और 180 लीटर शराब जब्त की है। मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित ऐतिहासिक और पहाड़ी क्षेत्र ऋषि कुंड मलमास मेले घूमने आई एक बच्ची की कुंड में स्नान करने के दौरान मौत हो गई। शेखपुरा जिले के करंडे थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 1032 बोतल केन बियर बरामद किया है। वाहन में सवार 2 व्यक्ति भागने में सफल हो गए। वहीं जिले के शेखुपुर सराय के डोबाडीह से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के नालंदा विश्वविद्यालय बाईपास रोड के नोनही मोड़ के पास एक ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा पर सवार 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमा पर एक नेपाली नागरिक को 6 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कंकौल गांव में एक बच्चे के अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत एनडीए नेताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां जारी की। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन सुबह 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है लखीसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनय कुमार।
1: लखीसराय जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में 562 एकड़ भूमि चिन्हित कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि भविष्य में यहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों। वर्तमान में लखीसराय बियाडा क्षेत्र में कुल 23 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें से 21 संचालित हैं। इनमें 20 राइस मिल शामिल है। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रूपेश कुमार झा ने बताया कि सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने तथा शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिले के 12 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और विभिन्न समस्याओं से जुड़े आवेदन अधिकारियों को सौंपे। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार बालगुजर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री सह ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने बढ़िया प्रखंड के पाली, लखीसराय के महिसोना और हलसी के कैंदी पंचायत में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। लखीसराय बाईपास रोड ओवरब्रिज के स्पैन में दरार आने के बाद प्रशासन ने पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पथ निर्माण विभाग के सचिव द्वारा की गई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद बाईपास रोड ओवरब्रिज के दोनों छोर पर लोहे का बैरियर लगाकर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। बीते दिनों केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 30.74 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पिपरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय भवन निर्माण के शिलान्यास में भाग लिया। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने और हड़ताल पर रहने वाले जिले के 15 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सचिवों पर लगातार कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने और हड़ताल पर रहने का आरोप है। जिले के किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। बीते दिन पटना में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत जिले की सभी 76 पंचायतों के राजस्व गांवों में अगले 30 मई तक विशेष अभियान चलाकर किसानों को आईडी बनाया जाएगा। सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को फार्मर आईडी अभियान का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इधर राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभान्वित पेंशनधारियों के लिए अब जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार द्वारा पेंशनधारियों को नया डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन भुगतान को रोका जा सके। निर्देश के अनुसार जब तक लाभार्थी का जीवन प्रमाण पत्र ई लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, तब तक उनके खाते में पेंशन की राशि नहीं भेजी जाएगी। जिले में अब तक 30,567 पेंशनधारियों ने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, जिसके कारण उन्हें पेंशन राशि नहीं मिल पा रही है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की निदेशक प्राची कुमारी ने बताया कि पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। प्रशासन ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर लखीसराय संग्रहालय में 2 दिवसीय जागरूकता का

0: कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कला संस्कृति प्राधिकारी सह संग्रहालय के सहायक अध्यक्ष मृणाल रंजन ने किया।
1: अभी आप सुन रहे थे लखीसराय जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विनय कुमार।
2: इन्हीं सवालों और विमर्श के साथ आज हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्तंभकार, लेखक और साथ ही पटना विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर गुरु प्रकाश पासवान जी। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी के उपनिदेशक सह समाचार प्रमुख अजय कुमार जी, जो इस चर्चा में अपनी दृष्टि साझा करेंगे। आप दोनों का आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल गुरु प्रकाश जी आपसे लेना चाहूंगी कि 12 वर्षों के इस सफर को अगर एक व्यापक नजरिए से देखें तो आप भारत के राजनीतिक इतिहास के रूप में कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये परिवर्तनकारी कालखंड रहा है बीता बार?

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। पेश है फिल्म संगीत।

फिर तेरी कहानी याद आ गई। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में। कातिल सैफल के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अनु मलिक ने।

कुमार सानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति को अभी आप सुन रहे थे फिल्म संग्राम में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे फर्स्ट लव लेटर, फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार बंधु लोकनि, स्वागत अछि अपने सब गोटे के सिंगरहारक आजुक अंक में। एहि टटका अंक के लऽ कऽ अहाँ सभक रेडियो सेटक संग संग न्यूज ऑन AIR ऐपक माध्यम सँ अहाँ सभक मोबाइल सेट पर सेहो आबि गेल छी। एखनसँ लऽ कऽ आधा घंटा धरि हम मने सोनू अपने सभक संग

गपसप करब, गीत सुनाएब, किछु शब्द विमर्श सेहो करब आ सबसँ पैघ बात, सबसँ महत्वपूर्ण गप तऽ ई जे अपने सब संगे हम किछु विशेष गपसप सेहो करब। एकटा गप जनै छियै, विशेष गप हमसब एतऽसँ की करै छियै? विशेष गप मने साहित्यिक गप, अपन साहित्य प्रणेताक विषयमे गपसप। ततबे नहि, साहित्य प्रणेते नहि, हमसब ओहन व्यक्तिक विषयमे सेहो गप करै छी जे हमर मैथिली साहित्य लेल अपन सब किछु लगा चुकल छथि, मने जे मैथिली आंदोलनी छलथि हुनको विषयमे हमरा सब गप करै छी। एकटा बात आर छै, कोनो चीजक जे मान्यता भेटैत अछि से ओहिना नहि भेटैत छैक, ओकरा लेल जखन संघर्ष होइत अछि, बहुत रास संघर्ष होइत अछि, तखन जाकऽ कोनो मान्यता भेटैत अछि। से ई बात भाषा साहित्यक संदर्भमे सेहो लागू होइत अछि। आइ हमर जे भाषा साहित्य अछि, मने मैथिली साहित्य जे स्थापित अछि, एकरा स्थापित करबामे किंवा करेबामे कतेको लोकक योगदान रहल अछि, किंतु किछु एहन व्यक्ति भेला जिनक योगदानसँ मैथिली भाषा साहित्य आइ अभिभूत अछि। हुनक मैथिली साहित्यक लेल सब किछु ओ अपन समर्पित कऽ चुकल छथि। जखन कखनो मैथिली भाषा साहित्य वा आंदोलनक गप होइत अछि, तखन प्रमुखताक संग जँ कोनो एकटा नाम अबैत अछि, तऽ निस्संदेह ओ नाम अबैत अछि, ओ व्यक्ति होइत छथि बाबू भोलालाल दास। भोलालाल दासक जन्म दरभंगा जिलाक कसरोर गाममे 1897 ईस्वीमे होइत छनि। भोलालाल दास मैथिलीक प्रचार प्रसार लेल अपन संपूर्ण जीवन समर्पित कऽ देलनि। मैथिलीक लेल ई बड़का सँ बड़का व्यक्तिसँ आर लेबामे पाछू नहि हटला, आ से कोना कतेक आर लेलनि, कोना कऽ मैथिली भाषाके आगू बढ़ेलनि, मैथिली भाषा साहित्यके स्थापित कयलनि, स्थापित करबा लेल ओ हुनक की योगदान रहल अछि, एहि सब विषयपर हमसब गप करब, जनतब लेब। मुदा किया नहि ताहिसँ पहिने एकटा मैथिली गीतक आनन्द लऽ लेल जाय।

एखन कुंज बिहारी मिश्र से हम सब ई गीत सुन रहल छलौं हैं। हम सब गप कर रहल छलौं हैं भोला लाल दास के विषय में। भोला लाल दास असल में एहन लोग छलखिन ने जे मैथिली के नाम पर मैथिली के हित के लेल ओ कोनो व्यक्ति से आर लऽ लै छलथि हैं, से पैघ पैघ लोग से सेहो, आ सोझा वाला व्यक्ति के ओ मुँह तोड़ जवाब सेहो दै छलखिन हैं, आ से तर्कक संग अपन बात रखै छलखिन हैं। एक बेर मैथिली के लेल पटना विश्वविद्यालयक तत्कालीन उपकुलपति डॉक्टर सचिदानंद सिंहक संग हुनका विवाद भ गेलैन, आ भोलालाल दास हुनक इच्छाक विरुद्ध अपन सुनियोजित सुसंगठित न्यायोचित प्रयत्नक फलस्वरूप ओहि विश्वविद्यालय में 1939 ईस्वी में मैथिली के स्वीकृति दियौलन। मात्र विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं, ओ विद्यालय स्तर पर छात्र सबके मैथिली पढ़ौनी करेबाक बीरा से उठा लेने छला, आ ताहि लेल ई मैथिली में बाल उपयोगी पुस्तक सभक निर्माण सेहो कैलन, पुस्तक सेहो लिखलन। बाबू भोलालाल दास अखिल भारतीय साहित्य परिषद दरभंगाक संस्थापक सदस्य छला। ओना तो ई अपन जीविकोपार्जन लेल ओकालतिक पेशा अपनौलन,

मुदा हिनका ओहिमे मोन नहि लगलनि आ ई अपन संपूर्ण जीवन मात्र मैथिली लेल समर्पित कऽ देबय चाहलनि। आ से ताहि तरहें जे अपन सब किछु, अपन रोजी रोजगार, अपन घर परिवार सब किछु त्याग देलनि मात्र मैथिलीक लेल, से जखन जतौ जाय रूपे मैथिली के खगता बुझेलैक भोलालाल दासक, भोलालाल दास ओहिठाम उपस्थित रहला, उपस्थित भेटला, तें भोलालाल दास के मैथिलीक दधीच कहल जाय छन। से केना ने दधीचिये जेका इहो त अपन संपूर्ण गला क आ मैथिली के सिंगार केलन, मैथिली के बचेलन। ई एकदम नवीन प्रगतिशील विचारधारा के लोक छला आ तकर प्रमाण से कुशेश्वर कुंवर आ हिनक संयुक्त संपादन में प्रकाशित मिथिलाक नामक जे पत्रिका छल ताई में एकटा टिप्पणी सँ एकर प्रमाण सिद्ध होइत अछि। ओ टिप्पणी एना अछि, कुमार पुरातन नीति निरत छथि दास नवीन समाजी, अछि आशा दुनू दुनू के सब विधि रखता राजी। वास्तव में बाबू भोलालाल दास एकदम नवीन विचारधाराक लोक छला आ ओ चाहित छला जे मैथिली निरंतर विकास करित रहे, मैथिली अपन विकास में सब दिन आगू बढ़ित रहे आ ताहि लेल उस सब क्षेत्र में अपन प्रयास केलनि। मिथिलाक एक अंक में ओकर ग्राहकता पर जोर दैत भोलालाल दास मैथिल मानस के कोना झकझोरबाक चेष्टा केलनि अछि से देखबाक बुझबाक योग अछि। ओ कहै छथि जे अनेक शिक्षित व्यक्ति एखन धरि काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट, लोकल म्युनिसिपल बोर्ड आदि कोन संस्था थिक, चुनाव अथवा वोट कोन वस्तु थिक, देश अथवा प्रांत कोन दिस जा रहल अछि, हमरा लोकनिक दीनावस्था वास्तविकता कारण की थिक आदि साधारण सा साधारण विषय नहि जनैत अछि। ओकरा बुझेबाक लेल बाबू भोलालाल दास पत्रिका जे प्रकाशन छल ताहि पर जोर देलनि। ओतबे नहि, ओ से व्यक्ति व्यक्ति धरि कोना पहुँचय ताहि दिस सेहो ओ अपन सतत अग्रसर रहला, कार्य करैत रहला आ हुनक प्रयासक फलस्वरूप अछि जे मैथिली अस्थायी भऽ कऽ आइ धरि अपन शिखर पर पहुँचल अछि। बाबू भोलालाल दासक मृत्यु भऽ जाइत छनि 28 मई 1977 ईस्वी कऽ, किंतु जखन कखनो भाषा आंदोलनक बात हैत निश्चित रूप सँ बाबू भोलालाल दास मोन पड़ैत रहता। हमरा सब आर किछु गपसप करब, लेकिन ताहिसँ पहिने एकटा आर मैथिली गीतक आनंद लऽ लेल जाए।

एखन हमसब मैथिली गीतक आनंद लऽ रहल छलहुँ हैं सज्जन कुमारसँ। हमसब गप कऽ रहल छलहुँ हैं बाबू भोलालाल दास परमे। असलमे बाबू भोलालाल दासक जे व्यक्तित्व छलनि हैं ओ आंदोलनात्मक तऽ छलनि हैं लेकिन प्रगतिवादी सेहो छलाह आ उदारवादी दृष्टिकोण सेहो छलनि। मैथिलीक प्रति ई सदैव समर्पित रहित छलाह। मैथिलीक विकासक लेल, मैथिलीक सर्वोत्तोन्मुखी विकासक लेल ई सदैव चिंतित रहित छलाह आ ई चाहित छलाह जे मैथिली से निन्ना सबके स्कूल में सेहो पढ़ायल जाए, ताहि लेल सेहो ई सतत प्रयासरत रहित छलाह। परिणाम सेहो हमरा सबके भेटल जे मैथिली स्थापित सेहो भेल।

एखन ममता ठाकुरसँ ई गीत सुनि रहल छलहुँ हेँ। आ देखू जे अब सिंगारहारक समय सेहो एकदम सम्पन्न होयबापर भऽ गेल अछि, तऽ सोनूके चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। आज रात 10:30 से आप सुनेंगे भारत नेपाल मैत्री संबंध पर आधारित कार्यक्रम हम एक हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध

0: करने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्र

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने

0: ने पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
2: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
3: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
2: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: उस बेटे को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिगारों से खिताब करते हुए डीके शिव कुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदऊ किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: दो मरतबा के

0: और दक्षिण प्रायद्वीपात कुछ समय कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: कौमी राजधानी खत्ते के कई इलाकों में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। दो भारतीय पहलवान आज वियतनाम के शहर डनांग में 17 साल तक की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए। 45 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में यूनान रोम जुमरे में सचिन कलप्पा श्रोले ने 110 किलोग्राम के जुमरे में उर्दुन के समी अहमद अलावेद को 11-4 से शिकस्त दी, जबकि रुद्र किरण निमहान ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सियोक मोसिम को 8-0 से हरा दिया। बैडमिंटन में भारत की पीवी संधू और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दो भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। पेश है फिल्म संगीत।

तीसरी आंख। इस फिल्म का यह गाना अभी आप सुन रहे थे। कृष्णा मुखर्जी, अनुराधा श्रीराम, मन्ना डे और मोहम्मद रफी के आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सावन को आने दो। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे यशुदास की आवाज़ में। पुरुषोत्तम पंकज के लिखे इस गाने को संगीत दिया था राज कमल ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। निदा फाजली के लिखे इस गाने को संगीत दिया था उषा खन्ना ने।

प्यार किए जा। इस फिल्म का यह गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कहीं दिन कहीं रात। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। SH बिहारी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था OP नैयर ने।

अजी बस शुक्रिया। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत के बोल फारूक कैसर के, संगीत निर्देशन रोशन का। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम।

लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संत कुमार झा को। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति शारदा सिन्हा के स्वर में ये लोकगीत।

महेशवाणी अभी आप सुन रहे थे हेमकांत झा के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना संत कुमार झा, शारदा सिन्हा, हेमकांत झा, पूनम कुमारी और बोध नारायण सिंह को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है भारत नेपाल मैत्री संबंध पर आधारित कार्यक्रम हम एक हैं। आलेख एवं वाचन सज्जाद अहमद खान और प्रस्तुति असद दाऊद की।

0: नमस्कार। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आधारित कार्यक्रम हम एक हैं के इस अंक के साथ मैं सज्जाद अहमद खान। इस अंक में सोनबरसा सीमा क्षेत्र से भारत और नेपाल का संबंध केवल दो पड़ोसी देशों का संबंध नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति, धर्म, भाषा, परंपरा और पारिवारिक रिश्तों से जुड़ा हुआ एक अद्वितीय संबंध है। दुनिया में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जहां दो स्वतंत्र देशों के बीच इतनी खुली और आत्मीय सीमाएं हों। भारत और नेपाल के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत और नेपाल के संबंधों को अक्सर रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है।
1: नाम राम प्रताप यादव हुआ, मलकवा साथ।
0: भारत और नेपाल का संबंध कैसा है?
1: ये तो बहुत पूर्वजों से चला हुआ है, समझे कि नहीं, कि हम लोग का बेटी रोटी का संबंध है। आवा जमन अभी तो क्या कहें, बहुत अच्छा है। माँ सीता का जैसे रामचंद्र भगवान हुए, उस सब में हम लोग उसी धर्म से हम लोग चल रहे हैं। संबंध तो बेटी रोटी का संबंध है, हम लोग का बेटी रोटी का संबंध है, क्या कहें इसमें। यहाँ का शादी उधर उधर उधर का बेटी इधर आई, इधर का बेटी उधर, शादी पूर्वजों से आए, अभी आए हुए, सामान ही किन्ने आए हुए खाने पीने के लिए। हम लोग का तो नेपाल में सामान ही नहीं मिल रहा है, महंगा मिलता है। भारत में तो हम लोग का बहुत सुविधा है, भारत से हम लोग अभी उसी से जी रहे हैं, भारत से जी रहे हैं। अभी जे भी है नून से लेके हर सामान हम लोग का, जैसे अभी बॉर्डर सील कर दिया जाए तो हम लोग का तो धो पड़ जाएगा ना। हम लोग तो बहुत विचित्र से जीने लगेंगे, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर इधर का आदमी इधर जाते हैं कमाने, बॉम्बे लुधियाना जाते हैं, इंडिया का भी यूपी उसे का इधर आते हैं कमाने, ईटा फैक्ट्री में अलग अलग आते हैं जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई किस्म का उन लोग का भी दिक्कत नहीं है, ना हम लोग का दिक्कत है।
0: भारत में पढ़ाई लिखाई के लिए भी लोग आते हैं?
1: हाँ, तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी जाते हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, भारत में पढ़ाते हैं।

0: बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तो भारत और नेपाल के संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। दोनों देशों की सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। नेपाल को भगवान बुद्ध की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है, जबकि भारत में बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण से जुड़े प्रमुख स्थल स्थित हैं। हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से भी दोनों देशों का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर और भारत का काशी विश्वनाथ मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं। माता जानकी की जन्मस्थली जनकपुर और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या दोनों देशों की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं।
1: मेरा नाम है मोहम्मद मंजूर अंसारी, हरिपुर वार्ड नंबर 5। बेटी बेटी का संबंध है, यहाँ के शादी वहाँ, वहाँ के शादी वहाँ होता है। आना जाना में भी सहूलियतें हैं, इधर का सामान उधर जा रहा है, उधर के इधर आ रहा है, कोई किस्म की दिक्कत ना है। शादी ब्याह करके तो कितना लड़की है उधर और उधर के इधर, नेपाल के इंडिया में, इंडिया के नेपाल में, अभी भी हो रहा है शादी ब्याह, रोजी रोजगार के भी ले आते जाते हैं। अभी यहाँ कोई किस्म की दिक्कत ना है।

0: भारत नेपाल की खुली सीमा। भारत और नेपाल के बीच लगभग 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। यह सीमा भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरती है। इस खुली सीमा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि दोनों देशों के नागरिकों का आवागमन सरल है। लाखों नेपाली नागरिक भारत में रोजगार प्राप्त करते हैं और बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी तथा श्रद्धालु नेपाल जाते हैं।
1: मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, सोनबरसा से हूँ, सीतामढ़ी बिहार। भारत और नेपाल का संबंध मैत्री संबंध है, बेटी रोटी का रिश्ता है। पूर्व से ही माँ सीता समय से ही राम जी अयोध्या से थे, उनका जो है विवाह जो है अपना मिथिलांचल जो है अयोध्या, ये क्या बोलते हैं, जनकपुर में है। उसी समय से ही हम लोगों का मैत्री संबंध है। हम लोगों का अपना बॉर्डर पे बेटी रोटी का संबंध है। बेटी रोटी का संबंध मतलब क्या है, ये पहले मिथिलांचल था, हम लोगों का जो प्रदेश है मतलब दरभंगा एरिया, ये पूरा मिथिलांचल था। तो आपस में यहाँ की बेटी का शादी उधर है, उधर की बेटी की शादी इधर है। हमारी सिस्टर का भी शादी नेपाल में ही है, जनकपुर में। उधर के लोग इधर आते, इधर के लोग उधर जाते, जैसे ये चाचा है उधर से इधर आ रहे हैं। सामान थोड़ा बहुत छोटा छोटा सामान अपने घर खर्चा के लिए ले जाते हैं यहाँ से, और उधर इधर के भी लोग बहुत सारे जो है उधर मजदूरी करते हैं, उधर के लोग भी इधर मजदूरी करते हैं, उसी को रोटी का संबंध बोलते हैं। दोनों एक दूसरे पर आधारित है। व्यवहार सर बहुत सामान्य है। व्यवहार जो जमीनी स्तर का है बहुत ही सामान्य है, आपस में एकदम भाईचारा है, किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना नहीं है इधर।
2: मन में ये भावना नहीं कि ये दूसरे देश
1: की, नहीं उस तरह का कोई भावना ही नहीं है।
0: अब बात बिहार और नेपाल के विशेष संबंध पर। यदि भारत नेपाल संबंधों की बात की जाए तो बिहार का विशेष महत्व सामने आता है। मिथिला की संस्कृति दोनों देशों को जोड़ती है। बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों का नेपाल से सीधा संपर्क है। मिथिला क्षेत्र की भाषा, खान पान, पहनावा और सामाजिक परंपराएं दोनों ओर लगभग समान हैं। विवाह संबंध भी बड़ी संख्या में स्थापित होते हैं। यही कारण है कि सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग स्वयं को एक बड़े सांस्कृतिक

0: परिवार का हिस्सा मानते हैं।
1: मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं यहाँ 2-3 वर्षों से रह रहा हूँ इस बॉर्डर क्षेत्र में, और मैंने भारत नेपाल के सीमा में जो देखे हैं मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। मुझे भी कई बार नेपाल जाने का मौका मिला है। मैं बहुत ही आसानी से नेपाल गया हूँ, और वहाँ कई सारे होटल वगैरह है, बस स्टैंड है, और बहुत सारा दुकान मॉल है, शॉपिंग वॉकिंग करने के जो मुझे देखा हूँ मैंने वहाँ किया हूँ, बहुत अच्छा लगा। कोई दिक्कत नहीं है भारत नेपाल के सीमा में, व्यापार में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग आते जाते हैं और कई तरह का व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर भारत नेपाल की सीमा पर जो SSB के जवान हैं, बहुत बखूबी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहा है। बहुत ही प्राचीन समय से हमारे भारत और नेपाल की संबंध रहा है। यहाँ के लोगों का शादी विवाह, व्यापार और धार्मिक स्थल से आना जाना कई तरह का संबंध रहा है। तो नेपाल लोग आसानी से जाते हैं, किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अतीत के संबंध में देखा जाए तो माता सीता का संबंध रहा है हमारे भारत से। अयोध्या से श्री रामचंद्र जी ने अपने पूरे बारात के साथ अयोध्या पहुँचे थे, और वहाँ माता सीता के साथ उनका विवाह हुआ था। उस जगह त्रेता युग की बात है, यह हम लोग तो सुनते हैं, रामायण में पढ़ते आ रहे हैं। इस चीज़ को रामायण में पढ़ा और मौखिक रूप से भी बड़े बुजुर्ग के लोगों मुँह से सुनते आ रहे हैं। वर्तमान में धाम देख रहे हैं, जनकपुर धाम मैंने देख रहा है। मैं वहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला है। 2 बार मैंने वहाँ गया। 2001 में मैं सबसे पहले बार गया जब मैं बच्चा ही था। उस समय मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो 8वीं क्लास में मैंने पढ़ रहा था। उस समय हमारे जिया जी आए थे और उन्हीं के द्वारा मैं नेपाल की यात्रा किया। सबसे पहला अनुभव मेरा वही है। 2001 में मैंने वहाँ गया, नेपाल के मंदिर और वो बरबीघा और क्या क्या है वहाँ 52 बीघा में है, वो सब मैंने देखा वहाँ। उसके बाद माता सीता का दर्शन किया, एक रात रहने का मौका भी मिला, तो मैंने वहाँ एक रेसिडेंशियल होटल में रहा था। उसके बाद मैं 2021 के बाद साथ अपने दोस्तों के साथ टूर प्लान किया। उसी कंडीशन में मैंने अपना घर प्रॉपर पुपरी से बाइक के द्वारा गया, और वहाँ जलेश्वर बॉर्डर पे मैंने भंसार कटवाया। भंसार कटवाने के बाद मैंने अपने चारों दोस्तों के साथ वहाँ गए जनकपुर धाम। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और उनको बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे 563 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कठिन 12 वर्षों की तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जब वो ज्ञान की प्राप्ति किए तो यहाँ इंडिया में कई जगह घूम घूम के लोगों को अपनी शिक्षा दीक्षा दिए। भारत के लोग नेपाल और नेपाल के लोग भारत में निश्चित रूप से अपना रोजगार करते आ रहे हैं सदियों से, और वर्तमान समय में भी कर रहे हैं। मैंने तो कई बार यहाँ सोनवर्षा में रहते हुए भी देखा है कि दिहाड़ी करने के लिए लोग नेपाल में प्रतिदिन जाते हैं दिहाड़ी मजदूर के रूप में, और वहाँ अपना जीविका कमाते हैं, शाम को फिर अपने घर आते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ के जो नेपाल में अपना प्रॉपर घर भी बना चुके हैं, वहाँ की नागरिकता भी हासिल कर चुके हैं, और वहाँ अपना व्यवसाय करके अपनी जीविका चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। इसके अलावा नेपाल के कुछ लोग भी हमारे भारतीय सीमा में आकर के अपना जीविका चला रहे हैं। बहुत सारे नेपाली लोग हैं जो हमारे स्कूल में भी कई बार वो सेल्समैन के रूप में आते हैं, और कुछ दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी आते हैं, कुछ पर्यटन के रूप में भी आते हैं, और कुछ लोग यहाँ से हमारे भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, कई सारे सिटी में जाकर के अपनी जीविका को चलाते आ रहे हैं।

सोनबरसा बॉर्डर के महत्व की बात करें तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित सोनबरसा बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क

0: बिंदु है। इसके सामने नेपाल का क्षेत्र आता है और ये मार्ग स्थानीय व्यापार, सामाजिक संपर्क तथा आवागमन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोनबरसा क्षेत्र मिथिला की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग व्यापार, खरीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा पारिवारिक कारणों से सीमा पार करते हैं। कई भारतीय नागरिक नेपाल के बाजारों में जाते हैं, वहीं नेपाल के नागरिक भी भारतीय बाजारों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों का लाभ उठाते हैं। इस प्रकार ये सीमा केवल एक प्रशासनिक रेखा नहीं बल्कि मानवीय संबंधों का जीवंत पुल है। नेपाल स्थित मलंगवा का महत्व। नेपाल के मलंगवा शहर का भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों से घनिष्ठ संबंध है। मलंगवा नेपाल के मधेश क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र है। मलंगवा के बाजारों में भारतीय और नेपाली दोनों प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होते हैं। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के बीच व्यापारिक गतिविधियां लंबे समय से चलती आ रही हैं। त्योहारों, मेलों और सामाजिक कार्यक्रमों में भी दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं।
1: मेरा नाम विनोद कुमार महतो है। मेरा घर मधुबनी ब्लॉक हुआराई का। यहाँ जो संबंध है ना, बच्चे में भी हम बच्चे के रूप में जैसे सातवां आठवां में पढ़ते थे, कोई भी सामान की ज़रूरत होती थी तो हमेशा हम है ना मधुबनी से बगल में बॉर्डर वहाँ इनरवा बाज़ार था, हम नेपाल का सटा हुआ, वहाँ थोड़ा सा दुकान, इंडिया के लोग ही दुकान करते थे, वहाँ छोटा छोटा सामान सब है ना, एक मोटा सा हवाई चप्पल चलता था। 1988 में बाढ़ आया था उस समय याद है ना, मोटा वाला चप्पल गद्दा टाइप पर होता था है ना, वो चप्पल पहन के जब मैं है ना बाढ़ के सड़क पर एक राटी में गया तो जैसे लगता था चप्पल दहा देगा है ना, वो चप्पल उस समय काफ़ी प्रसिद्ध था। हमारे भाई साहब मराठी मारर में रहे, मिल में चावल मिल में है ना मुंशी जी का काम किए, हम सब बच्चे थे है ना उसी समय, बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक वहाँ मुंशी जी का काम किए। वहाँ से उस समय पीला थी धागा वाला, पीला लकीर वाला वो कपड़ा होता था, सुविधा था, ट्रेन पकड़ के चले जाते थे जयनगर, जयनगर बाद पैदल 10 मिनट का रास्ता था कमला नदी के पास, नेपाल के माध्यम से ही लोग वहाँ से लाते थे।
0: ये तो आप बता रहे हैं आप बीती, अब जग बीती बताइए कि भारत और नेपाल के लोगों का संबंध कैसा रहा है और वर्तमान में कैसा है।
1: पहले भी संबंध काफ़ी रहा है ना, बहुत ऐसे रिलेशन हैं आसपास पड़ोस मोहल्ला में जिनका शादी जो है नेपाल में हुआ है ना, कई बारात जो है हमें जाने का मौका मिला, सोनबरसा में आने के बावजूद भी यहाँ भी कई बाराती जो है नेपाल में गए हैं है ना, सलाही जिला के लोग सब अभी भी नामांकन के लिए इंटर में है ना यहाँ इस विद्यालय में आते हैं है ना, अपना माइग्रेशन ये सब लेकर जो सही कागज़ है वो लेकर आते हैं, नामांकन कराते हैं। और नेपाल के विद्यार्थी के लिए जो है वो आपको कन्हौली स्कूल में उसका प्रावधान है,
0: प्लस टू में एडमिशन यहाँ आपके इस विद्यालय में नेपाल क्षेत्र के बच्चों का भी होता है।
1: हाँ होता है ऐसा है ना, और स्कूल में हो सकता है ना, अभी नेपाल के 2 साल पहले थे अभी नहीं है, लेकिन एगो जैसे पूछ कर जाते हैं विद्यार्थी तो हम कहे आओ करा लो, पहले ऑनलाइन कराओ उसके बाद होगा। कनौली के भाषण है बगल में, कनौली राजकीयकृत ऐसे ही पुराना स्कूल है, वहाँ पर होता है। विवाह पंचमी होता है तो विवाह पंचमी के अवसर पर भी अयोध्या से है ना राम जी का बारात निकलता है, वहाँ से आते हैं प्रस्थान करते हैं जनकपुर की ओर प्रस्थान करते, अभी भी होता है। आपको परिक्रमा निकलता है ना, जिसमें डोला भगवान का डोला रहता है, उसके साथे साथे लोग सब घूमते हैं जगह जगह, उसका विश्राम होता है कलना शायद, तो वो कलना वहाँ से निकलता है भगवान का डोली, उसके साथे लोग सब परिक्रमा करते हैं है ना, जगह जगह साधु संत भी रहते हैं है ना, मौर मोहल्ला में उनका लिए व्यवस्था होता है, जहाँ जाते हैं वहाँ पर विश्राम होता है, वहीं भोजन छाजन होता है, बनता है ना।

0: ऐसे ही करके लगभग 10 दिन 15 दिन का होता है, फिर होली के पहले वो समापन हो जाता है। ये आज से नहीं है, ये जो डोले जो है आपको बहुत पहले से चलता आ रहा है। कोई सामान अब तो थोड़ा थोड़ा अथी हो, लेकिन ज़्यादातर सामान क्या है, लोग जाते थे बाज़ार में, हमारे यहाँ शिक्षक भी बहुत पुराने शिक्षक सुनते हैं कि है ना, नेपाल यहाँ मलंगवा बगल में है, मलंगवा जिला सरलाई जिला हुआ, मलंगवा शहर हुआ, वहाँ जाते थे लोग है ना घूमने, वो नदी के पास शहर से है ना, पहले जाती थोड़ा सा नहर है उसके सहारे वहाँ पर जाते थे लोग, घूमते थे, फिर चले। हम सब भी कोई सामान लेना रहता है ऐसा तो अभी भी जाते हैं। भूत के बारे में तो सब परिचित है ना, वहाँ के लोग नेपाल के लोग ज़्यादातर है ना आते हैं बोधगया में, है ना, बोधगया में जब वो सीजन आता है वहाँ पर, तो उस समय बस के द्वारा अभी भी क्या है लोग यहाँ तीर्थ यात्रा करने आते हैं, ज्ञान को प्राप्त पाने के लिए, ऐसे जो हो तीर्थ स्थान घूमने के लिए, जिस तरह से ऐसा ही नहीं, ये नहीं, आपको जब क्या कहते हैं बाबा धाम जो सावन में मेला लगता है आपको देवघर में, वहाँ जाने के लिए भी नेपाल के लोग बस भाड़ा करके बुक करा के अक्सर आते हैं नेपाल के। बगल में मढ़िया है, मढ़िया लीजिए, नेपाल के अक्सर लोग है ना ट्रैक्टर से, इंडिया के लोग भी जाते हैं वहाँ जल भरते हैं, नदी है ना, वहाँ जल भरते हैं आपको, और जल भर के लाते हैं, इंडिया से लोग भी
1: और
0: जाते
1: भारत के
0: हैं।
1: लोग जो इधर जाते हैं जनकपुर,
0: जनकपुर के जो है माँ जानकी का जन्म स्थल तो सीतामढ़ी आपको है,
1: भव्य
0: लेक भव्य
1: मंदिर,
0: मंदिर, लेकिन उनका जो है आपको जनकपुर में है ना, लोग वहाँ अभी भी इंडिया के लोग है ना काफ़ी टूरिस्ट के रूप में जाते हैं, वहाँ रहते हैं है ना, उनका भी आय का स्रोत है ना, इस तरह से इतना ही नहीं कि जहाँ
1: फिर भीड़
0: जनकपुर।
1: लगी रहती है
0: हाँ,
1: भारतीय
0: वो
1: लोगों की, दर्शन
0: भारतीय
1: करने
0: लोग, हाँ
1: वालों की।
0: दर्शन के लिए, हाँ हमेशा लोग हर क्षेत्र से है ना जाते हैं, ये नहीं कि एक ही क्षेत्र से है, यहाँ तो नेपाल और भारत का सीमा क्षेत्र जो है काफ़ी लंबा है, हर क्षेत्र से है ना आपको जाते हैं। सीतामढ़ी है तो बगल में भिट्ठा मोड़ है, जयनगर मधुबनी है तो जयनगर है, फिर उधर लौखा लौखी है निर्मली है, ये सारा जो आपको सीमांचल है ना, इस हर क्षेत्र से लोग वहाँ जाते हैं जनकपुर।

आर्थिक और व्यापारिक संबंध। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल की बड़ी मात्रा में आयातित वस्तुएं भारत से जाती हैं। पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, दवाइयां, मशीनरी और अनेक आवश्यक वस्तुएं भारत से नेपाल पहुंचती हैं। दूसरी ओर नेपाल से कृषि उत्पाद, जड़ी बूटियां, हस्तशिल्प और अन्य वस्तुएं भारत आती हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में छोटे और मध्यम स्तर का व्यापार हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है। सोनबरसा और मलंगवा जैसे सीमावर्ती क्षेत्र इस आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग। भारत और नेपाल के बीच शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घनिष्ठ सहयोग है। अनेक नेपाली छात्र भारत के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते हैं। वहीं सीमावर्ती नेपाली नागरिक इलाज के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में आते हैं। सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना जैसे शहर नेपाल के लोगों के लिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक और स्वास्थ्य केंद्र बन चुके हैं। धार्मिक पर्यटन की भूमिका। धार्मिक पर्यटन भारत नेपाल संबंधों को और अधिक मजबूत बनाता है। जनकपुर माता सीता की जन्मस्थली, अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली, पशुपतिनाथ मंदिर, लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, महाबोधि मंदिर, इन धार्मिक

0: स्थलों के कारण दोनों देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान निरंतर बढ़ रहा है।
1: मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार झा हुआ, घर नानपुर ब्लॉक में एक बत्रा गांव है, वहीं मेरा घर हो गया। यहाँ सोनवर्षा प्लस टू में टीचर हूँ मैं। यहाँ आपस में लोग इस पार से उस पार जाते हैं, उस पार से इस पार आते हैं, आना जाना लगा रहता है। भारत और नेपाल का रिश्ता सबसे पहले माता जानकी का जन्म हुआ सीतामढ़ी में, उस समय से उनका निवास स्थान राजा जनक का जनकपुर धाम था। उसी समय से दोनों देश का संबंध भी अच्छा रहा हुआ। भगवान राम की शादी भी यहीं हुई, धनुष युग के बाद स्वयंवर रचा गया, बहुत मधुर संबंध रहा। उस समय से अभी भी संबंध बना हुआ है नेपाल और भारत से।
0: बेटी रोटी का संबंध ये क्या है?
1: बेटी रोटी का संबंध भी यहाँ के लोग वहाँ शादी करते हैं, वहाँ के लोग यहाँ शादी करते हैं, ये भी संबंध लोग निभा ही रहे हैं।
0: जहाँ तक मैं समझता हूँ, रोटी का संबंध वो हुआ कि जब यहाँ के लोग उस नेपाल क्षेत्र में जाकर के रोजगार तलाशते हैं, या फिर नेपाल क्षेत्र के लोग भारत में रोजगार प्राप्त करते हैं, तो इसको रोटी का संबंध कहा जाता है। तो दोनों को मिला करके बेटी रोटी का संबंध कहते हैं। तो रोटी के संबंध को आप क्या समझते हैं, क्या पाते हैं?
1: रोटी का संबंध है कि यहाँ के लोग वहाँ भी जाकर अपना नौकरी चाकरी करते हैं, जीविकोपार्जन। नेपाल में भी, नेपाल के लोग भी यहाँ आकर के शिक्षा दीक्षा भी लेते हैं और रोजी रोजगार भी उनका चलता है। बहुत लोग यहाँ पर काम करते हैं विभिन्न क्षेत्र में। रोटी का संबंध नेपाल के लोग अपना बहुत यहाँ पर संसाधन है, बहुत से क्षेत्र में रोटी का संबंध मतलब जीविकोपार्जन का साधन भी है। लोग वहाँ से आते हैं और विभिन्न क्षेत्र में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं, और यहाँ पर किसी को कोई इसके लिए आपत्ति नहीं है अपने भारत देश में। तो चल रहा है, लोग निभा रहे हैं, कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म तो नेपाल में हुआ, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र भारत रहा, जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई। इस बहाने बहुत अच्छा मैत्री संबंध रहा, तब से अभी तक चल ही रहा है।
0: बात करें भविष्य की संभावनाओं की, तो भविष्य में भारत और नेपाल के संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं, यदि सीमा क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना विकसित की जाए, व्यापारिक सुविधाओं का विस्तार हो, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अधिक आयोजन हो, सोनबरसा और मलंगवा जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। ये कह सकते हैं कि भारत और नेपाल का संबंध केवल राजनीतिक या आर्थिक संबंध नहीं है, बल्कि ये दिलों का संबंध है। सोनबरसा और मलंगवा जैसे सीमावर्ती क्षेत्र इस आत्मीयता के जीवंत उदाहरण हैं। यहाँ रहने वाले लोग प्रतिदिन ये साबित करते हैं कि सीमाएं देशों को बांट सकती हैं, लेकिन संस्कृति, भाषा, परंपरा और मानवीय रिश्तों को नहीं बांट सकती। भारत और नेपाल की मित्रता जितनी पुरानी है, उतनी ही मजबूत भी है। आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में ये संबंध और भी अधिक प्रगाढ़ होगा तथा दोनों देशों की जनता शांति, समृद्धि और विकास के नए आयाम स्थापित करेगी।

आप सुन रहे थे भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आधारित कार्यक्रम हम एक हैं। इसके लिए संकलनकर्ता थे सज्जाद अहमद खान एवं असद दाऊद। आलेख वाचन और निर्माण था सज्जाद अहमद खान का तथा प्रस्तुतकर्ता थे असद दाऊद। आकाशवाणी दरभंगा से ये कार्यक्रम प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात

10 बजे प्रसारित किया जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और सीमा क्षेत्र के लोगों की बातचीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे भारत नेपाल मैत्री संबंध पर आधारित कार्यक्रम हम एक हैं। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न

रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of ntacuet.nta.nic.in. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब यहीं समाप्त होती है आज की हमारी ये सांध्यकालीन सभा। कल प्रातः 5:49 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।